सुप्रभात, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 30वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 20 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है। लीजिए सुनिए हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: आज हमने भारत

0: और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे इसकी भाग संख्या 1।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों,

सों छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस भाग संख्या एक। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुविचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि किसी एक विचार को अपनाएं और फिर उसी विचार को अपना जीवन बना लें। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

साहस वहां से शुरू होता है जब हम जानते हैं कि हार निश्चित हो सकती है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। आइए सुनते हैं ये रचना जिसे गाया है पंडित भीमसेन जोशी ने।

ता केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि ये वो एक मानसिक साहस है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने और कभी ना हार मानने की प्रेरणा देती है।

श्रुति सडोलीकर की आवाज़ में गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जय सिंह फिल्म का ये गीत। उषा मंगेशकर की आवाज़, प्रेम धवन के बोल, रमेश नायडू का संगीत।

मुकेश की आवाज़ में सुनते हैं ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म 40 दिन से। कैफी आज़मी के बोलों को संगीत से सजाया है बाबुल ने।

आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में लीजिए सुनिए अगला गीत बाप बेटे फिल्म से।

Thank you.

मीना कपूर, मन्ना डे, मुकेश और साथियों की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार साहिर, संगीतकार अनिल विश्वास। चार दिल चार राहें फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7 बज चुके हैं। कुछ बातें कुछ गीत, लीजिए सुनिए ये अगला कार्यक्रम।

रंगीन नजारे मौसमों में खुल चुके हैं। भोर का पंछी उठ चुका है, अपने पर फैलाकर उड़ने को बेताब है। कुछ नींदी सी पलकें भारी हैं, कुछ सुस्ता रही हैं, लेकिन कानों में ये धुन गूंजने लगी है कि उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। कुछ बातें कुछ गीत आपके कानों से होता हुआ आपके दिलों में गूंज रहा है। मैं हूं आपके साथ शैला। दूर सूरज की उगती किरण ने इशारा कर दिया है कि अब जिंदगी को एक बार फिर से रोशन कर दो।

जो बीता उसे भुला दो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो, जो पीछे छूट गया उसे छोड़ दो, जो सामने इंतजार कर रहा है उसका स्वागत करो, हल्की सी पीली तपिश है लेकिन हवाओं में आज भी ठंडक है, गमों की धूप हो सकती है लेकिन खुशियों की एक हल्की सी लहर महसूस करो तो जरूर मिलेगी। उड़ता हुआ हर पंछी ये इशारा कर रहा है कि मेरा सफर शुरू हो चुका है, तो तुम क्यों थक कर बैठे हो, आओ साथ मिलकर एक लंबी उड़ान भरते हैं। अपने परों को कुछ इस तरह फैलाते हैं कि सारा जहान अपनी बाहों में लगने लगे, सारे सपने अपनी मुट्ठी में लगने लगे, सारी मंजिलें नजरों में नजर आने लगे, रास्ते खुद ब खुद सामने खुलने लगे। जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी अड़चने हैं, वो कहीं दूर पार हो जाए। लेकिन ये सब कैसे संभव है? सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही हूं जो ये सब कर सकता हूं। मैं और मेरा मन, बस हम दोनों के मिलने की देर है और फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुबह का प्यारा सा पैगाम आप सभी के नाम, सुनते रहिए कुछ बातें कुछ गीत।

सही तो है, कुछ लोगों के बिना जीना वाकई नामुमकिन सा लगता है। वो कुछ बेहद अपने, कुछ बेहद खास, और जिंदगी में उनको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उन्हें अपनापन का एहसास करवाते रहना, हर बार ये कोशिश करना कि वे अपने आसपास बने रहें, भूल कर भी उन्हें रूठने नहीं देना।

फिलहाल तो आसपास बस और बस गर्मी की समाचार ही नजर आ रहे हैं। कल यानी कि मंगलवार के दिन की बात करें तो तापमान की जो सुइयां है वो बताती हैं कि 43 डिग्री सेल्सियस आंकड़ा रहा। हाँ, ये तो आंकड़ों में बता रहे हैं, लेकिन जो बेचैनी महसूस हो रही है उसको तो कहाँ ही दर्ज किया जा सकता है। लेकिन एक बात मुझे तो लगती है कि रातों में अभी भी ठंडी हवाओं का असर आ ही जाता है, तो कम से कम सूर्य नगरी की रातें तो सुकून भरी है ना। और भाई ऐसे देखा जाए तो सुकून तो दिल में होना चाहिए, फिर देखिए जो अपने मन में शांति लेकर चल रहा है वो आपको हर दम खुशी में ही नजर आएगा। लेकिन अपने दिल के अंदर के चैन और सुकून को बरकरार रखने के साथ आसपास के माहौल का जायजा लेना भी बेहद जरूरी है। तो जनाब बराबर इशारा यही किया जा रहा है कि हीट वेव और स्वयं को इससे तपती लहर से बचाना बेहद जरूरी है। तो सूत्र अभी भी यही कह रहे हैं कि अगले 3 दिन तक लगातार हीट वेव चलेगी। इन सब के बीच में हमें अपनी जिंदगी की गाड़ी को कैसे सही सलामत चलाना है ये तो आप खुद से बेहतर कौन जान सकता है। भाई खुद का तो ध्यान रखना है ना, क्योंकि बहुत से लोग जो आप पर डिपेंडेंट है, तो फिर अगर आप कहीं झुकझुका गए तो फिर उनका ध्यान कौन रखेगा। इसलिए इन तपती दोपहरों में खुद को थोड़ा बचा के रखेगा। कुछ विकल्प ढूंढे जा सकते हैं, कुछ दिमाग लगाया जा सकता है, लेकिन अति आवश्यक है अगर बाहर निकलना तो उसके लिए भी अपने आप को बचाते हुए निकला जा सकता है। बाकी तो भाई हम जो मारवाड़ी हैं वो तो इन सब लू के थपेड़ों के आदि हो ही चुके हैं और इस तरह से गर्मियां सहन कर करके मजबूत हो चले हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, जुड़े रहिएगा।

आपके और मेरे मन की बातें आपके साथ कर चुकी हूँ और कुछ बातें हैं जो अभी भी बाकी रही हैं। फिलहाल मेरी प्लेलिस्ट आपके लिए चुन कर लाई है कुछ बेहद ख़ास ट्रैक्स। मेरी बातें ये कहती हैं कि अगर आपकी आंखों के ख्वाब पूरे नहीं हुए हैं तो उन्हें देखना छोड़िए नहीं, किसी न किसी दिन खुद आपकी ज़िंदगी में दरवाज़ा खटखटाएंगे और वो ख्वाब कहेंगे, लो मैं आ गया, अब इन्हें पूरा कर लो।

रिसर्च कहता है कि जो इंसान जितनी ज्यादा देर सूरज के सामने बिताता है वो उतना ही खुश रहता है। हाँ हाँ, रिसर्च ये कहती है, लेकिन रिसर्च ये थोड़ी ना कहती है कि दिन की तपती धूप में जाके हम सूर्य के सामने आंखें खोलकर खड़े हो जाएं, लाओ दादा हमें खुश कर दो। भाई सुने सबकी, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। ये बात हो रही है सुबह की गुनगुनी धूप की, जब सूर्य हल्का हल्का नारंगी होकर अपनी पहली पहली आभा बिखेरता है। फिलहाल मेरे और आप सभी के इस बावरे मन के लिए ये गाना।

तो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जो कोई शख्स आपको सबसे पहले याद आता है या सबसे आखिर में याद आता है, याद रखिएगा, या तो वो आपकी खुशियों का कारण है या फिर आपके दुखों का।

अगर आपको भी कई बार ऐसे ही चलते चलते बैठे बैठे ये लगने लगता है कि आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट हो रहा है, और असल में ऐसा नहीं हो रहा होता है, या फिर यूं कह दें कि हमें कान में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि हमारे फोन की रिंगटोन बज रही है, यानी कि हम अपने मोबाइल फोन के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि जो नहीं हो रहा है उसका एहसास भी हमें होने लगता है। तो जनाब, मैं आपको बता दूं कि इसे आम बात नहीं मानना है, ये भी एक बीमारी का संकेत हो सकता है। इसे नाम दिया गया है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का, यानी कि फोन वाइब्रेट नहीं हो रहा है फिर भी हमें बार बार ऐसा महसूस होना। तो भाई, मैं तो यही कहना चाहूंगी, कम से कम अभी के लिए, इस वक्त के लिए तो अपने इस फोन को अपने से दूर हटा दीजिए, जब तक कि रेडियो आपके कानों तक पहुंच रहा है। और जिंदगी की वाइब को एंजॉय कीजिए। कुछ बातें, कुछ गीत।

एक रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आप जिंदगी में बेहद अकेलापन महसूस करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपके कोई दोस्त या मित्र मंडली नहीं है और इस कारण आप बहुत अकेले रहते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसीलिए भाई, जैसे भी हैं दोस्त दोस्त है, तो

उन्हें अपने पास अपने दिल से चिपका के रखिए। टेढ़ा है पर मेरा है वाली बात को भूलने ना दीजिए। दोस्त किसी भी रिश्ते से बहुत ज्यादा आगे पढ़ते हैं क्योंकि वो हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं। और यकीन मानिए हमारे सबसे बुरे से बुरे वक्त में वही होते हैं जो हमारे पास में आके खड़े होते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि गलती कई बार हमारी खुद की ही है ना। इसलिए तो कहा गया है कि तू ही तो मेरा दोस्त है। तो अब तक अगर आपने अपने लिए कोई अच्छा सा दोस्त नहीं ढूंढा है तो एक सही समय का इंतजार करिए और अपने दिल की राहों को खुला रखिए। कोई ना कोई बिल्कुल आपकी ही तरह आपके ही जैसा आके आपसे टकरा जाएगा और फिर आप कहेंगे वाह क्या यार मिला है।

is all we need. इसी जोश को बनाए रखिए. फिलहाल यहाँ मेरी टटा बवाई कहने का वक्त हो चला है. आपको इस सड़कते भड़कते दिन के साथ छोड़े चले जा रही हूँ. बिल्कुल उदास नहीं होने का, अपने स्फूर्ति और एनर्जी को बनाए रखने का. मैं थी आपके साथ शैला. इसी तरह

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज़।

0: जाने
1: आने लगा। तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ, पीएम सूर्य घर मुफ्त।
2: .in हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रूपये की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौता

0: बातों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बुले, आकाशवाणी न्यूज ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
5: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिला

0: पात्र हैं, पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
2: हमें जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
3: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री

0: डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में हैं। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रूपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
2: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology.

0: सुबह की किरणों ने कानों में ये बात कही है, रुकना नहीं पथिक, अभी तो है राह नहीं, थोड़ी सी ठोकर से हिम्मत मत हारना, आंधियों के बीच भी दीपक सा जलना, हर दिन एक अवसर है खुद को गढ़ जाने का, सपनों को अपने सच में बदल जाने का, चलते रहो विश्वास की डोरी थाम कर, मंजिल भी झुकेगी ना एक दिन तुम्हें सलाम कर। और फुल मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ हम लेकर आ गए हैं आप डेली मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार,
1: और मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आपके अभिनंदन के साथ ही बताते हैं आपसे हमारी टीम का परिचय।

0: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं विक्रम सिंह भाटी और प्रकाश पवार।
1: कंट्रोल रूम से नियंत्रण कमान संभाल रहे हैं प्रवीण कुमार।
0: हमारे साथ एफएम चैनल पर हैं बलवीर और प्राइमरी चैनल पर हैं शैला माहेश्वरी उद्घोषिका के रूप में।
1: इस खूबसूरत कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास के द्वारा और संयोजन किया है राजेश लामरोन ने।
0: और जानकारियों से सजे इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं दो हमराई, मैं मीता मुल्तानी
1: और मैं नेहा रांकावत।

श्रोताओं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी हमारी जो भीतर की कमियां हैं उनको लेकर बहुत ही दुखी रहते हैं। हम सोचते हैं कि वो कमियां हैं और लेकिन उन पर काम करना, किस तरह से शुरू करना है हमें नहीं पता चलता। एक कहानी आपको सुनाती हूँ। ये कहानी है रोहन की, जो आपकी और मेरी तरह ही एक आम इंसान था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वो एक बहुत बड़ा चित्रकार, पेंटर बनना चाहता था। घंटों मेहनत करता, रंग बिखेरता, लेकिन जब भी अपनी पेंटिंग्स लोगों को दिखाता, सब उसकी कमियां निकाल कर रख देते। कोई कहता रंगों का तालमेल ठीक नहीं है, तो कोई कहता इसमें कोई भावना नहीं दिखती, कोई विचार नहीं दिखता। लगातार मिल रही असफलताओं और लोगों की आलोचनाओं से, क्रिटिसिज्म से तंग आकर रोहन ने मान लिया कि शायद वो कभी एक अच्छा चित्रकार नहीं बन पाएगा। उसने हार मान ली और अपना ब्रश एक कोने में फेंक दिया। फिर एक दिन उसकी मुलाकात शहर के एक मशहूर बुजुर्ग चित्रकार से हुई। रोहन ने अपनी मायूसी उनके सामने रखी और कहा, सर मैं हार मान चुका हूँ, लोग मेरी कला में सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, मुझ में शायद कोई टैलेंट है ही नहीं। उस बुजुर्ग चित्रकार ने मुस्कुरा कर कहा, रोहन निराश मत हो, कल तुम अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाओ और उसको शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रख दो। और हाँ, नीचे एक नोट लिख देना, जिस किसी को भी इस पेंटिंग में जहां भी कमी दिखे वहां एक छोटा सा गलत का निशान लगा देना। रोहन को बात समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। फिर अगले दिन शाम को जब रोहन उस चौराहे पर अपनी पेंटिंग वापस लेने गया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बुरी तरह टूट गया और रोते हुए बुजुर्ग चित्रकार के पास पहुंचा। मैंने कहा था ना सर, मैं किसी काम का नहीं हूं, सबने मेरी पेंटिंग को खराब बता दिया है। तो बुजुर्ग चित्रकार ने उसे उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत रोहन, कल एक और पेंटिंग बनाना, बिल्कुल वैसी ही, और इस बार चौराहे पर रखने के बाद नीचे एक दूसरा नोट लिखना, इस पेंटिंग में जहां

जहां भी कोई कमी दिखे कृपया उसे सुधार दें। नजरिया बदल गया। रोहन ने भारी मन से एक और खूबसूरत पेंटिंग बनाई। उसी तरह की पेंटिंग थी वो भी, नए नोट के साथ उसने चौराहे पर उसे रख दिया। शाम को जब वो वापस गया तो वो हैरान रह गया। पेंटिंग जैसी की तैसी थी, उस पर एक भी निशान नहीं था। अगले दो दिनों तक वो पेंटिंग जो थी वो वहीं रही, लेकिन किसी ने उस पर एक लकीर भी नहीं खींची थी। तो रोहन जो है दौड़कर बुजुर्ग चित्रकार के पास गया और कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तब उस चित्रकार ने रोहन को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया, रोहन इस दुनिया में कमियां निकालना सबसे आसान काम है, और खुद की कमियां देखना भी सबसे आसान काम हो सकता है। कमियां निकालना आसान है, लेकिन पहली बार में सबने उस पर निशान लगा दिए थे उस पेंटिंग पर, लेकिन जब बात कमी को सुधारने की आई तो सब पीछे हट गए, क्योंकि जिम्मेदारी लेना और सही ज्ञान रखना मुश्किल होता है। तुम्हारी जिंदगी की कमान दूसरों के हाथों में नहीं है। लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं। इसीलिए लोगों को उनकी जो आलोचना है उनसे डर कर अपने सपनों को छोड़ना कोई अच्छा काम तो नहीं है। तो बस श्रोताओं, मेहनत करते रहो और अपनी कमियों को खुद सुधारा करो।

श्रोतों, अभी आपने ये स्टोरी सुनी कि मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मित्रों, नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी ऐसा ही कुछ है दोस्तों। अगर देते रहोगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, और रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। इसलिए हमेशा चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। और ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह बोझ क्रोध का हो, ईर्ष्या का हो या अभिमान का हो। इसलिए कोई बोझ नहीं लें, हमेशा दूसरों पर कुछ ना कुछ न्योछावर करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।

0: दोस्तों, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या कहोगी नेहा?
1: बिल्कुल सही बात है। रिश्ते जो होते हैं वो आपको अंदरूनी बाहरी मजबूती प्रदान करते हैं और आपके जीवन को एकदम ही सफल बना देते हैं, सुगम बना देते हैं।
0: बिल्कुल तो हमें रिश्तों

0: अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इस मौके पर श्री मोदी ने बताया कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की नवाचार रणनीतिक भागीदारी अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में देश का बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। राज्य सरकार ने देर रात 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 1 एडीजी, 4 आईजी, 2 डीआईजी और 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। हरिंद्र कुमार कुमावत महावर को कोटा रेंज का आईजी बनाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन, टोंक, भरतपुर, नागौर और दौसा के एसपी बदले गए हैं। एडीजी लता मनोज कुमार को सिविल राइट से कम्युनिटिंग पुलिस में भेजा गया है। वहीं एडीजी हवा सिंह घुमरिया को एडीजी सिविल राइट्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थापना के उपलक्ष्य में चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत इस साल 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव के जरिए परंपरा, नवाचार और जनविश्वास एक साथ नजर आएगा। श्री देवनानी कल विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बोल रहे थे। राज्य में सहकारिता, उपभोक्ता, भंडार और क्रय विक्रय सहकारी

हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: राज्य में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में व्यापक मॉडल स्थापित किया गया है। इसके तहत 500 से ज्यादा तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन्हें जियो टैग कर लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 83,000 से ज्यादा स्कूलों में तंबाकू मुक्त विद्यालय परिसर संबंधी निर्देशों की पालना की गई है और तंबाकू मुक्ति के लिए 2.5 लाख से ज्यादा जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में तंबाकू मुक्त अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
0: प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा दो पारियों में हो रही है। करौली जिले में इसके लिए 25 और बारां जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTA की ओर से नीट UG परीक्षा 21 जून को दोबारा लिए जाने की घोषणा के बाद शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से विद्यार्थियों की वापसी शुरू हो गई है। शहर के छात्रावासों, पुस्तकालयों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की चहल पहल नजर आने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर कल जयपुर से VC के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लू और तापघात, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और HPV वैक्सीन की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने और आवश्यक दवाइयां तथा कूलिंग उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बना हुआ है। गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कल प्रदेश के 9 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। चित्तौड़गढ़, अलवर, पिलानी, श्रीगंगानगर, दौसा, चूरू, करौली और कोटा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। वहीं फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के ऊपर मापा गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आई है, किंतु तेज गर्मी का असर बरकरार है। आज दक्षिण पूर्वी भागों में और सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी है। श्रीगंगानगर निवासी मानव सुथार का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वे भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में खेलेंगे। मानव लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलर और बल्लेबाज भी हैं। सुथार की इस उपलब्धि से जिले भर में खुशी का माहौल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

श्रोताओं, समाचारों के बाद हम फिर से हाजिर हैं एक कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है नमस्कार। आज नमस्कार में जानकारियों से सजी बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: श्रोताओं, आज है 20 मई और आज का दिन देश और दुनिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास? वर्ष 1498 और दिन था आज का, यानी 20 मई को ही पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत के मलाबार तट पर कालीकट, जो कि आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं, वहां पहुंचे। इसके साथ ही यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज पूरी हुई।
1: श्रोताओं, आज ही के दिन 1873 में दुनिया की पहली ब्लू जीन्स का जन्म हुआ था। जी हाँ, बिजनेसमैन लेवी स्ट्रॉस और दर्जी जेकब डेविस को तांबे के रिवेट्स वाली मजबूत पतलून बनाने का पेटेंट मिला था। यहीं से आज की मशहूर ब्लू जीन्स की शुरुआत हुई थी।
0: दोस्तों, वर्ष 1932 प्रसिद्ध महिला पायलट अमेलिया ईयरहार्ट ने अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेले उड़ान भरी थी, जिसे पूरा करने के बाद वे आयरलैंड में उतरी थी। आज ही के दिन
1: सन 1972 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोलकाता में दूसरे हावड़ा ब्रिज विद्यासागर सेतु की आधारशिला रखी थी।
0: वर्ष 1990 में आज ही के दिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी पर तस्वीरें भेजी थी।

साथी श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, जो हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मधुमक्खियों की भूमिका को मान्यता देने के लिए और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा स्लोवेनिया की पहल पर की गई थी। 20 मई का दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जांसा के जन्म दिवस की स्मृति में चुना गया था। मित्रों, मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं देती, बल्कि ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन परागण करता है। दुनिया की लगभग एक तिहाई फसलें और पौधे इन्हीं पर निर्भर होते हैं। आजकल बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, निवास स्थान के नुकसान और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से इन छोटे जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। तो हम सभी जहां कहीं भी मधुमक्खी को या फिर उनके छत्तों को देखें, जो स्थानीय मधुमक्खी पालकों के लिए प्राकृतिक शहद तैयार करते हैं, उनके लिए हम अनुकूल फूल पौधे लगाकर इनके लिए योगदान दे सकते हैं। तो देखिए, मधुमक्खी की भी कितनी महत्ता बताई गई है कि ये हमें प्रकृति का कितना अद्भुत तोहफा है, जो हमें पारिस्थितिकी संतुलन को नियंत्रण रखने में सहायक है। तो अब सुनते हैं इसी के मिलता जुलता एक गीत।

श्रोताओं, खास बात के बाद अब का बात हो जाए काम की। गर्मियों की छुट्टियों का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है, माता पिता के माथे पर उतनी बड़ी चिंता की लकीरें खिंच जाती है, क्योंकि बच्चे छुट्टियों में शरारतें करते हैं, अपने मम्मी से नई नई डिश बनाने की फरमाइशें करते हैं। स्कूल बंद होने का मतलब है कि बच्चों का सेट रूटीन खत्म हो जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो मित्रों, ऐसे में उनका ज़्यादातर समय टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम्स में जो बीतने लगता है, उससे अलग छुट्टियों में उनका रूटीन बदल कर उन्हें कैंप में भेजना चाहिए। तो ये समर कैंप किस तरह से लाभदायक हैं, इसके बारे में आज हम काम की बात करेंगे। मित्रों, रिसर्च के अनुसार छुट्टियों में समय का अनुशासन छूट जाता है, जिससे बच्चे सुस्त हो जाते हैं। शारीरिक गतिविधि में कमी और स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों के हृदय के स्वास्थ्य, नींद और व्यवहार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए छुट्टियों में भी रूटीन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो बच्चे समर कैंप जाते हैं, वे घर पर रहने वाले बच्चों की तुलना में कहीं ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। समर कैंप का फिक्स रूटीन होता है, जहाँ जाने के बाद बच्चे नए दोस्त बनाते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और शारीरिक गतिविधि में लगे रहते हैं। इससे उनका स्क्रीन टाइम खुद ब खुद कम हो जाता है। उसके लिए कहाँ कहाँ भेजा जाए और क्या किया जाए, तो बच्चों को शाम के समय घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उन्हें आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भेजना चाहिए। उन्हें स्विमिंग क्लास भेज सकते हैं, या उन्हें स्केटिंग करने के लिए भेज सकते हैं, या जिमनास्टिक के लिए। खुले मैदान में खेलने से बच्चों की हड्डियों का विकास अच्छा होता है, शरीर का एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट तेज होता है। साथ ही जो बच्चे डांस के लिए इंटरेस्टेड हों या मार्शल आर्ट सीखने जाएं, उनके लिए डांस क्लासेस भेजना बहुत अच्छा है। डांस से भी उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, और डांस, जुम्बा, ताइक्वांडो आदि भेजकर भी उनके रूटीन को बेहतर बनाया जा सकता है। कोई भी ऐसी शारीरिक गतिविधि जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, वह व्यायाम है, और बच्चों को इनके लिए भेजने के साथ ही घर में दोपहर में छोटे छोटे काम सिखाए जाएं। बच्चों को मिट्टी के पौधे लगाने, पौधों को पानी देने या अपने स्वयं के काम स्वयं करने के लिए, जैसे अलमारी सेट करने जैसे काम करने भी सिखाए जाने चाहिए। भले दोपहर की गतिविधि खेलकूद न हो, लेकिन ये बच्चे को लगातार एक्टिव बनाए रखती है, और साथ ही इन एक्टिविटीज से उनमें जिम्मेदारी का एहसास होता है और साथ ही साथ उनका प्रकृति से जुड़ाव भी होता है। तो साथियों, आप भी बच्चों को छुट्टियों में इन एक्टिविटीज में जरूर भेजिए।

0: श्रोताओं, आज है बुधवार और बुधवार को हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है इतिहास। और इतिहास में आज हमको ले चलते हैं आप सभी को बटेश्वर हिंदू मंदिर, जो मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। और चंबल घाटी में स्थित यह स्थल 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार राजवंश द्वारा निर्मित लगभग 200 बलुआ पत्थर के मंदिरों का एक विस्तृत समूह है। मित्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन खंडहर हो चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया गया है। यह स्थान ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर दूर और मुरैना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के चंबल की घाटी के बेड़ों में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिरों का विशाल समूह है। यह ऐतिहासिक स्थल बहुत ही भव्य बना हुआ है और भगवान शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के 3 प्रमुख परंपराओं को दर्शाते हैं। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है यहाँ के मंदिर, जो शंकाकार शिखर पर को अपने में समेटे हुए हैं। लगभग 25 एकड़ के क्षेत्र में फैले यह 200 छोटे बड़े मंदिर एक बहुत ही वास्तुकला का अद्भुत नमूना दिखाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणकारियों के हमलों के कारण यह पूरा परिसर खंडर में बदल गया था, लेकिन 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और प्रसिद्ध पुरातत्वविद के मोहम्मद के नेतृत्व में इसका पुनर्निर्माण किया गया और बिखरे हुए पत्थरों को जोड़कर मंदिरों को फिर से खड़ा करने का एक अद्भुत और कठिन कार्य शुरू किया गया। इसे टूटे हुए मंदिरों को जोड़ने की दुनिया की सबसे बड़ी पहेली के रूप में भी देखा जाता है।
1: श्रोताओं, इस बटेश्वर हिंदू मंदिर का मुख्य आकर्षण है भूतेश्वर मंदिर, और इस पूरे स्थल का नाम शायद भूतेश्वर मंदिर से पड़ा है, जो इस परिसर का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। ये स्थान है पदावली के पास एक पहाड़ी के ढलान पर स्थित, जो चंबल नदी घाटी के किलों के

करीब है और यहाँ पहुंचा कैसे जा सकता है सड़क मार्ग द्वारा अगर बात की जाए तो बटेश्वर मंदिर मुरैना शहर से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में और ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और इसका निकटतम हवाई अड्डा अगर देखा जाए तो वो ग्वालियर ही है। लगभग 40 किलोमीटर दूर इसका निकटतम हवाई अड्डा है और निकटतम रेलवे स्टेशन इसका मुरैना और ग्वालियर इसके प्रमुख रेलवे स्टेशन माने जाते हैं जहां से टैक्सी या बसों के माध्यम से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक बात और ध्यान देने की है कि कई मंदिर अभी भी पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन यहाँ का प्राचीन और कलात्मक माहौल इसे फोटोग्राफी और ऐतिहासिक पर्यटन के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाता है।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में जन्मतिथि विशेष व्यक्तित्व की चर्चा कर लेते हैं। आज भारत के एक महान और साहसी सैनिक कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जन्मतिथि है, जिनका जन्म आज ही के दिन 1918 को राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था और 1948 के भारत पाक युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर के तीतवाल सेक्टर में दुश्मन की चौकियों को नष्ट करने की जिम्मेदारी उनकी टुकड़ी को मिली थी। भारी गोलाबारी के बीच अपनी टीम के अधिकांश साथियों के शहीद होने और खुद भी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। अकेले ही आगे बढ़े और दुश्मन के कई बंकरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। अंतिम सांस तक लड़ते हुए उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। मेजर पीरू सिंह, इनका जीवन केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं बल्कि कर्तव्य, त्याग और राष्ट्र प्रेम की प्रेरक गाथा है। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े पीरू सिंह ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और आगे चलकर भारतीय सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की रक्षा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं की सम्मान में राजस्थान के झुंझुनू में एक भव्य प्रतिमा और सर्कल बनाया गया है और भारतीय नौसेना और सेना ने अपने कई जहाजों और शिविरों का नाम पीरू सिंह के नाम पर रखा हुआ है। उनकी जयंती पर देश उनके इस बेमिसाल शौर्य को नमन करता है।
1: श्रोताओं, जयंती के मौके पर आज हम याद करते हैं हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत को। पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए थे। ऐसे साहित्यकारों में वे उनका नाम आता है जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी के रूमानी कवियों जैसी वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे। जन्म के महज 6 घंटे के भीतर उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और वे लोगों से बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाते थे। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर कई रचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था। पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मित्रों, उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं वीणा, पल्लव, गुंजन और जो छायावादी शैली में सौंदर्य और प्रेम की प्रस्तुति है, युगांत, युगवाणी तथा ग्राम्या में पंत जी के प्रगतिवादी और यथार्थपरक भावों का प्रकाशन हुआ है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, रजत रश्मि, इन संग्रहों में अरविंद दर्शन का उनका प्रभाव परिलक्षित होता है। पंत जी की अंतर्दृष्टि तथा संवेदनशीलता ने जहां उनके भाव पक्ष को गहराई और विविधता प्रदान की है, वहीं उनकी कल्पना प्रबलता और अभिव्यक्ति कौशल ने उनके कला पक्ष को संवारा है।
0: श्रोताओं, आज ही के दिन 20 मई 1977 को दिल्ली में जन्मी भारतीय महिला क्रिकेट की उन अग्रणी खिलाड़ियों में से एक अंजुम चोपड़ा का भी आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने बचपन से ही क्रिकेट के प्रति गहरा लगाव रखा। अंजुम चोपड़ा उन कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी प्रतिभा और मेहनत से भारतीय टीम में इन्होंने स्थान बनाया था और वे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी, संयमित खेल शैली और नेतृत्व क्षमता के लिए जानी

जाती हैं। अंजुम चोपड़ा भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 101 दिवसीय मैच खेलने का गौरव प्राप्त हुआ। मैदान पर उनकी बल्लेबाजी किसी शांत नदी की तरह लगती थी, जिसमें धैर्य भी था और अवसर आते ही तीव्र प्रवाह भी था। क्रिकेट से संन्यास ले लिया है उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खेल से अपना जुड़ाव जो है बनाए रखा है। क्रिकेट में वे कमेंट्री, लेखन और खेल विश्लेषण के माध्यम से महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही हैं और उनकी आवाज आज भी कमेंट्री बॉक्स में खेल की बारीकियों को सहज और रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है। अंजुम चोपड़ा का जीवन संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की एक प्रेरक मिसाल है। दोस्तों, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा और निरंतर मेहनत के बल पर महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं। आज उनके जन्मदिवस पर हम समस्त आकाशवाणी टीम की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

श्रोताओं, अब हम बात करते हैं स्मृति दिवस की। तो आज लाल बाल पाल में से प्रसिद्ध बिपिन चंद्र पाल की पुण्यतिथि है। 20 मई 1932 के दिन उनका निधन हुआ। भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में प्रसिद्ध बिपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थी। वे लाल बाल पाल तिकड़ी का एक हिस्सा थे और उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का संस्था की स्थापना की और साथ ही समाज सुधार के क्षेत्र में भी वे बहुत अग्रणी रहे।

0: साथ ही आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं टी प्रकाशम की, जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात वकील, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्हें उनके अदम्य साहस और वीरता के कारण आंध्र केसरी की उपाधि दी गई थी। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री और भाषाई आधार पर बने पहले आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे।
1: श्रोताओं, भारतीय समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए लीला दुबे की आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। भारत की अग्रणी महिला विद्वानों में से गिनी जाने वाली, जिन्होंने समाज, परिवार, लैंगिक समानता और भारतीय सांस्कृतिक संरचनाओं पर गहन अध्ययन किया था। आज उनकी हम पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए, श्रद्धा नमन करते हुए ये संकल्प ले सकते हैं कि समाज में समानता, सम्मान और मानवीय मूल्यों को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। उनका जीवन ज्ञान, संवेदनशीलता और सामाजिक चेतना का सुंदर संगम था। श्रोताओं, हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान रखने वाले गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की भी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। वे हिंदी कविता के ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने रचनाएं कई सारी लिखी, लेकिन राष्ट्र प्रेम पर, सामाजिक चेतना पर और मानवीय संवेदनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति उनमें हमें देखने को मिलती है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में उनका विशेष स्थान माना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने, देशभक्ति की भावना को प्रबल बनाने का कार्य किया। और उनकी जो भाषा शैली है उसकी बात करें तो वो काफी सरल, सहज और जनमानस से निकट थी। इसीलिए उनकी रचनाएं आम लोगों के हृदय तक आसानी से पहुंच जाती थी।
0: स्नेही नाम के अनुरूप उनकी रचनाओं में प्रेम, संवेदना और आत्मीयता का मधुर स्वर मिलता है। उनकी शैली की झलक देने वाली कुछ पंक्तियां अक्सर उद्धृत की जाती हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार को हम कहते हैं अलविदा। कल सुबह फिर मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मीता मुल्तानी,
1: नेहा रांकावत का नमस्कार।

0: ये था मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम। नमस्कार, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। लोक संगीत, आइए आपको सुनवाते हैं ये कार्यक्रम।
1: आवो आवो नी हो गणपति आवो नी।
0: कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस रचना से, जिसे गाया है कालूराम प्रजापति ने।

गौरीशंकर गांधी को अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आइए सुनते हैं ये रचना महेश चंद्र सेन की आवाज़ में।

धाकड़ दमामी द्वारा गाई हुई इस रचना के साथ ही लोक संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये रचना जिसे गाया है शोभा गुरटू ने।

बेगम अख्तर को अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी जोधपुर से, कार्यक्रम है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं अगली रचना जिसे गाया है कैलाश खेर ने।

0: श्रोताओं, ये था कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 11 बज चुके हैं। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ,
1: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: फिल्म संगीत में ये गीत सुनिए, कहो ना प्यार है फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें। गीत के बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने और तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने।

ये गीत है फिल्म कुछ कुछ होता है से। आवाज़ें उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति। गीतकार है समीर और संगीतकार है जतिन ललित।

ये गीत है फिल्म वीर ज़ारा से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़, गीतकार है जावेद अख्तर, संगीतकार है संजीव कोहली और मदन मोहन।

ये गीत है फिल्म आशिकी, आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम शारवान।

ये गीत है फिल्म हम आपके हैं कौन से, आवाज़ें हैं बाला सुब्रमण्यम, गीतकार है देव कोहली, संगीतकार है राम लक्ष्मण।

ये गीत है फिल्म हम है राही प्यार के, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलगा याग्निक, गीतकार है समीर, संगीतकार है नदीम शारवान।

ये गीत है फिल्म दिलवाले कभी ना हारे, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू, संगीतकार है नदीम शारवान।

ये गीत है फिल्म हम आपके है कौन से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम, गीतकार देव कोहली और संगीतकार है राम लक्ष्मण।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर अब प्रस्तुत है लोक संगीत।

এ দুন্দল রে এ মরা রে মিঠরা মারু মারে হামে ঝিনড় রে।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, गीतकार है इब्राहिम अश्क और आवाज़ें हैं हरिहरन की।

0: इस गीत के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने लोगों से घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीद और भंडारण नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन की बढ़ती मांग के बावजूद पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। राज्य में सहकारिता उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। वहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर कई स्थानों पर मेडिकल स्टोर बंद रखे गए हैं। एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर ये बंद रखा है। जयपुर में जीएसटी चोरी और फर्जी बिल मामले में वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। सघन जांच के दौरान अवैध आईटीसी के जरिए करीब 13.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में मुरलीपुरा निवासी नितेश कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। उसने विभिन्न फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर जीएसटी चोरी की थी। प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा कड़ी सुरक्षा और एआई आधारित निगरानी के बीच ली जा रही है। 2 पारियों में हो रही इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सभी केंद्रों की लाइव फीड जयपुर स्थित कमांड सेंटर तक पहुंच रही है, जहां आईटी और एआई विशेषज्ञ रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार मेजर पीरू सिंह की जयंती आज

0: आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर झुंझुनू स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने मां भारती के वीर सपूत को नमन किया। गौरतलब है कि 1948 में जम्मू कश्मीर में दुश्मनों का सामना करते हुए हवलदार पीरू सिंह ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था। दुश्मनों की चौकियों को ध्वस्त करते हुए वे गंभीर रूप से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। दिन के साथ ही रातें भी काफी गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए लू का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है। 2 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और 14 में येलो अलर्ट बताया गया है। कल चित्तौड़गढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, अलवर और पिलानी में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सिरोही को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के AI आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक से तैयार ये 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। ये संग्रहालय का तीसरा AI आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। इससे पहले संग्रहालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI होलो बॉक्स भी शुरू किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब प्रस्तुत है कृषि जगत।

किसान भाइयों की करो, आप तो खेतीरा काम काज का है लघु आप क्रिया करो। और हमारा पर बात करा लाला दिना तावड़ो भी पड़ियो है। किसान भाई री कोशिश आज रहे कि भाई लोगो लग आप रहे हर दिन काम काज को है खेत्र में ने आप क्रिया करो। किसान भाई री कोशिश आज रहे कि भाई जिका भी आप रे सीमित भूमि है उन उपयोग करता थका जिका सिंचाई रा संसाधन है जो बात करा ट्यूबवेल है भेरो है तो उन रो पानी जिको है आपने सहजन काम ले आनो है। थोड़े पानी सु ज्यादा बेसी मात्रा रा मैंने आपा फसला रो उत्पादन करा जदीज आपने चार पैरी जिकी ओपत है वा रिया करे। किसान भैया हम आप बात करा कि भाई गर्मी चाल रही है तो गर्मी री जुताई रा भी बहुत फायदा होया करे। जो किसान भाई खेतरी जुताई करता भगत ध्यान रखे के भाई फसला रा महीने जी का कीड़ा लागिया करे जिकी व्याधिया है वे आप रे लागिया करे तो उन जी की रोकथाम है हो जाया करे। इन भगत जी लाला जी की आपा फसला ली हाँ रबीरी तो हमें जो खेत मान लो खाली होगा है किसान भाई बढ़िया आप रे जुताई करे ताकि उन रा महीने कोई कीड़ा है वे सब मर जाया करे। गर्मी री जुताई किसान भाई खेत में करे तो खेत ने आप रे बढ़िया खाली छोड़ दे और गहरी जी की जुताई जिनसु भूमि जी को तापमान है बढ़ जाया करे जिनसु कहीं हुआ करे के कीटारा जी का इंडा है कोई शंकु है कोई लट्टा है अन सबरो खात्मो हो जाया करे। फसल ली बढ़िया उपज रे वास्ते रेबीरी जी हमारा पा बात करा की भाई आप कटाई कर ली हाँ उन रे बाद रे महीने गहरी जी की जुताई है गर्मी ऋतु रे महीने खेत खाली राखनो भी बहुत लाभदायक होया करे क्योंकि ए जी का कीटारा जी का इंडा है प्यूपा है लार्वा है ए खत्म हो जा तो आउवले बगत रे महीने जी का किसान भाई खरीफ रे मौसम रे महीने जो धान है बाजरो है दलन है सब्जिया रे महीने जी का कीट है रोग है उन्होंने जी को प्रकोप है वो कम हो जाया करे। तो कुल मिलान बात है कि गर्मी रे महीना गहरी जुताई न पाने खेत में करन खेत ने खाली छोड़न राखनो चाहिए जिन सु कहीं वे सगड़ा कीड़ा मरजा और जी की बीमारियां है वे आने वाले जी की फसल है उन महीने नी लागिया करे। हम बात करा कि भाई गर्मी री जुताई रा कई कई लाभ अपने होया करे।

जिका किसान भाई आपरे सब्जी री पैदावार ले तो वाने बहुत ज्यादा लाभ मिलिया करे। खेतरी मिट्टी रे महीने ढेला बन जावे जिनसु बरसात रोजी को पानी है वो हल्लो सोखनी जी की क्षमता है आपरे बढ़ जाया करे। तो जुताई सु कही कई जी का ढेला है ए बन जा ढेला रे बीचे जी की जगह है और मैंने जी को मेरो पानी है वो ज्यादा ज्यादा समयित हुआ करे जिनसु खेत ने बहुत लाभ मिलिया करे। और हल्लो खेत भरी जिला जिनसु कही हुआ क्या खेत मैंने जी की नमी है वह लंबे टाइम तक रिया करे। किसान भैया गर्मी री जुते रो लाभ रे मैंने आपा जी बात करा गहरी जुताई सु जी की दोबड़ी है कांस है मोतियो है बाईसूरी है ए जी की जटिल प्रकार जी की खरपतवारा है इनसु कही है किसान भाई ने आपरे मुक्ति मिल जाया करे। और आने वाली जी की आपा आगली जी की हाका ला तो उन महीने आपने जी को निनाण है वो भी आपने कम करनो पड़े इन जी की लागत है निनाण री वह भी आपरे कम आया करे और वह जी की पोषकता है वह इन फसल ने लागिया करे। इनके साथ साथ गर्मी री जुते सु गोबरी जी की खाद है खेत रे महीने जी का उपलब्ध दूजा जी का कार्बनिक पदार्थ है वे आपरे भूमि रे महीने हिल मिल जा जिनसु उन्हीं जी की उर्वरा क्षमता है मिट्टी री वह भी आपरे अच्छी बने और जी का पोषक तत्व बेगो बेगा जी का फसल आने जी का है वे भी आपरे उपलब्ध हो जा। और एक सगला सु मोटी बात आ है के गर्मी रे मौसम रे महीने जी की आप जुताई करा उनसु पानी जी की भूमि रो जी को कटाव है उन महीने बहुत मात्रा में कमी हो जाया करे क्योंकि एक खेत रे महीने आप जुताई नहीं करा तो उन्हें कहीं वे खेत खरो पड़ जाया करे। तो जी भी मान लो पानी पड़े तो पानी बह पुरान में मिट्टी रो कटाव क्रिया करे और जुताई सु कहीं वे मोटा मोटा ढेला बन जा तो उन ढेला महीने पानी जी को ज्यादा ज्यादा समाहित हो जाया करे तो खेतरो पानी बे प्रोन खेतरे बारे नहीं जाया करे। हमें किसान भैया अपने सामी बात आवे है कि भाई आज की गर्मी री जुताई है आपने किन टाइम करनी चाहिए इनो जी को टाइम टेबल है वो कहीं है। तो गर्मी री जुताई रे बगत में प्रोग्राम रे शुरुआत में मैं आपसे बात करी कि भाई जिमे आप रबी री जी की फसल है आप काट ला लेला मान लो उन बाद महीने थोड़ी घनी नमी भी महीने रहे और नमी रहे उन वक्त आप जुताई करा कल्टी है तविया काटा तो आप रे बहुत ही बढ़िया रिया करे। तो जो नमी रहनी बहुत जरूरी है जितनी नमी वेला तो बढ़िया आप रे कल्टी लागेला बढ़िया आप रे तवी लागेला तो ओ अपन टाइम ध्यान रखना है कि भाई जीवी रबी री फसल आप लेला और जमीन महीने बढ़िया नमी वे उन वक्त आप बढ़िया जुताई कर दा। गर्मी री जुताई किन तरह कर सका गर्मी री जुताई 20 से 30 सेंटीमीटर गहरे तक जो है मिट्टी पलटने वाला जो हल है उन आपने करनी चाहिए और खेतरो जो ढाल जो है आपने वो उगुण लेर अतुणा तरफ वे तो आपने जिकी जुताई है वह ध्रुव लगान दिखण दिशा रे महीने लेवनी चाहिए ताकि वह जिकी ढलान है वह आप काटता रहा और आप बढ़िया जुताई करा। जिनसु कही है कि मेरो पानी है जिन वक्त खेत में पड़े तो उन वक्त कही हुए के पानी सु जिकी मिट्टी है आपने वह बेवे कोनी और ट्रैक्टर चलावा उन वक्त तवेदार जिको मोल्ड बोर्ड वे उनरो हलू आपने गर्मी रे महीने गहरी जुताई करा तो बहुत ही जुताई रे वास्ते बढ़िया रिया करे। किसान भैया हमें मान लो आप जुताई भी कर ली तो एक बात आवे कि भाई गर्मी रे महीने जुताई करा उन आपने घणी फायदा आपने मिले फायदा तो मिले लेकिन साथ साथ जुताई करता वक्त किसान भाई

इन्हें कई सावधानी राखनी चाहिए, उनके बारे में भी आप बात करा। जो मिट्टी रा जी का मोटा मोटा जी का ढेला रहे और मिट्टी मान लो भुरभुरी नहीं हुए, क्योंकि गर्मी के महीने जो को हवाओं जो को मिट्टी रो जो को कटाव है, इंडी जी की समस्या है अभी एक हो जाया करे। और ज्यादातर जी का रेतीला इलाका है जो अपने दड़ा वाला भी खेत गणा ही है, वट है गर्मी के महीने जुताई अपने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेतीली मिट्टी के महीने अपा जुताई कराला तो ज्यादा से ज्यादा जी को रेत रो जो को कटाव है ज्यादा वेला और अपने आंधी भी चाले मान लो तो मिट्टी उड़परीन दूजी ठोड़ भी जती रहे तो मिट्टी रो शरण उड़ने लाग जाए करे। तो एक खास खास जी की सावधानियां है अपने रखनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखता थका कोई भी आप कार्य करा, चाहे वो खेती बाड़ी रहो चाहे अपने पशुपालन रहो, उन महीने अपने लाभ मिलिया करे। किसान भाइया आ ही जानकारी के आप गर्मी री जुताई करन किन तरह से आप फायदो ले सका और अपने कई कई सावधानियां रखनी चाहिए। कृषि जगत प्रोग्राम रो बगत पूरो वेरियो है। दिनेश राणे जाने शीख दे रहो। राम राम।

0: पगा में पाजेब, हाथ में चूड़ी और होठों पर मीठी सी मुस्कान। घर रे आंगन री है लक्ष्मी, राखे परिवार रुमान। आपने अठे किया करे कि घर री धनियाणी हस्ती खेलती रहे तो पूरो घर है वो स्वर्ग बन जावे। चाहे रसोई री खुशबू सुलेर, टाबरा री किलकारियां हुओ, सभा री सेवा तक आपनी माँ बहना पूरा घर ने एक धागा में पिरोए राखे और अपना मीठा बोल सु और मेहनत सु आंगना ने भी मेकावे। तो आ हंसती खेलती है आपना सगली आंगना ने मेकावती सगली सखियारो स्वागत है कार्यक्रम गणगौर रे माई ने। और आपरी सखी कोमल राठौड़ रा घणे है तरक सु राम राम। और आज मारे साथ है भावना जी। तो भावना जी आपने भी मारा घणे है तरक सु राम राम।
1: बिल्कुल कोमल जी, आपने मारा गणी मान राम राम। और गणगौर प्रोग्राम होणन वाली मारी प्यारी प्यारी सखिया ने भी आपरी सखी भावना लखारारा गणी मान राम राम। तो कोमल, हताया तो आपा करा लाई, पण ब्यू पहली हुणा एक प्यारा सो गीत।

0: लाख और काच रो चूड़ो थारो सुहाग, मेहंदी राचा हाथ में जाग उठ्यो भाग। घूमर घालो गोरी खनकाओ चूड़ी आज, थाने देखणे पूरो मरुधर आज। बिल्कुल भावना जी,
1: हाँ
0: हाथारी जकी आ रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं बे अपनी पहचान बतावे, और इरा रंग इतना इरी डिजाइना भी इतनी है कि
1: हाँ
0: जति भी डिजाइना चालती रहे, आपा भी और अपनी बहनिया रो मन भी है जो को खरीदन वास्ते करे। और अपना इतिहास रे मायने भी चूड़िया ने आपा गहना सु भी सब सा पुराना रूप में आपा मान्या करा। और
1: बिल्कुल
0: अगर इरी पहली खोज री अगर बात करा तो इरो क्रेडिट जको है वो मोहन जोदड़ो री जकी बस्तियां हैं बाने
1: हाँ
0: दियो गयो है, जकी आज सु लगभग 5,000 साल पहला की है।
1: जी
0: और पुराना टाइम री बात करा तो पहली चूड़ियां हैं जकी सीप और मिट्टी सु बनाई जावती, और जिया जिया औजार आया तकनीक आई वीरे बारे में समझ भी विकसित हुई, बिया बिया कई धातु री काच री कई तरह री कीमती पत्थरा सु ए चूड़िया हैं जकी बनन लागे। और आज रा टाइम में आप देखा कि सिंथेटिक है, प्लास्टिक है, रबड़ है, मेटल है, कई तरह री चूड़िया हैं
1: चूड़िया
0: जकी
1: दिखे।
0: चाल गई। जिया
1: हाँ
0: की पुराना टाइम में भी देखो बनती जिया की लकड़ी की है,
1: हाँ
0: लाख है, पत्थर है, कांच है, मिट्टी की, तांबा की, कांसी की, सोना चांदी, एडी कई धातुअरे चूड़िया बनती और पहनी जावती। और आजकल भी आप पहन, हाँ बस थोड़ो सो एको मॉडल है वो बदल गो,
1: बदल गया
0: नई
1: है।
0: तरह की बनन लागी, पर जो को नगीना है, कई तरह रे कुंदन है वे आपने देखने मिले।
1: बिल्कुल कांच है, कई तरह रे अपन डिजाइन आए जो अलग अलग तरह रे देखने मिले। बिल्कुल को मतलब तो अपन जो भारत देश है नी, वो केवे नी की कारीगरी, कई चीज त्योहार, ये कई अठेरी परंपरा, कई रंग बिरंगी के नी कपड़ा चूड़िया है बैन खातरी प्रसिद्ध जानी जा करे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो देखो कि बात कर रहे आपा चूड़िया री, तो फिरोजाबाद है बीर मायने, देखो फिरोजाबाद में काचरी चूड़िया है वे बहुत ही फेमस है बटेरी। और फिरोजाबाद ने तो सुहाग नगरी और ग्लास सिटी रे नामों भी जानी जा करे हैं। तो अटेरी बनियोड़ी जी की काचरी चूड़िया है वे पूरे ही देश रे मायने मशहूर है। और बात करा राजस्थान री, तो राजस्थान रे मायने जयपुर रे मायने जोहरी बाजार है बिने तो सगड़ा ही जाने हैं, बटे तो लाकरी चूड़िया बनिया करे हैं
0: बिल्कुल
1: जिन्हें अपा मोकड़ी भी कहया करा। हाँ तो ये जी की रंग बिरंगी लाकरी चूड़िया है वे ज्यादातर अपनी बहने है वे तीज तिमार और गणगौर है एड़ा खास त्योहार माते पहनना रो इनो बहुत ही

0: मेथवरा क्या करे हैं बिया जा देखो कि बीकानेर है। तो आपने ध्यान है कि पहले रे टाइम रे मैंने राजघराना रहू था वेने कही है कि हाथी दात्रा चूड़ा पहने करता। हाँ हाथी दात्री चूड़िया पहने करता। हाँ तो वह कही बीकानेरी प्रसिद्ध है।
1: बिल्कुल। और पहली चूड़िया बनाने वास्ते समुद्री सीप या पत्थर ने कठोर जगह माथे रगड़ और चूड़िया बनाई जाती,
0: बनाया थे।
1: और
0: हाँ
1: मिट्टी की चूड़िया ने सिर्फ आकार देर सुकार बना था। धीरे धीरे चूड़िया माथे डिजाइन बनी जन लागी। पहली शुरुआत में कई उतो की खुदाई करर देवी देवता री मूर्तियां बनाता,
0: हाँ
1: फूल पत्ती बनाता, कई पैटर्न है जका उकेरता। और आज तो आपा देखे यहाँ कांच पेल बूंटी पात भी चालगो, चांदी का पात चालगा, सोना का पात चालगा,
0: कई तरह तरह रहा
1: घूंगरा
0: लग
1: तक तक लगावे। आजकल तो नाम और फोटवा भी चूड़िया पर है जो को लगावन लाग गया।
0: लगाउन ला
1: तो
0: गया
1: टेम रे
0: है।
1: साथे साथे कई बदलाव हुआ, जका चोखा भी लागे और मैचिंग रे साथे आपे चूड़िया मैचिंग कर आज पहना भी। हाँ
0: बिल्कुल पैरा। हाँ
1: तो चलो सुना दे एक और चूड़ी पर बने
0: बिल्कुल
1: डो गीत।

0: तो भावना जी आप देखा है, यहाँ आजकल बहना जकी है, खुद तो सजी है, सजन में
1: हाँ
0: माहिर है, घर ने भी सजा हुआ है, ब्याह में भी माहिर है, लेकिन आजकल तरह तरह का काम भी घर बैठे बहना जकी है कर रही है, वहां में आप रो हुनर ने आगे भी ले जा रही है, और
1: हाँ
0: घर बैठे बैठा कमाई रहा जका नवा नवा रास्ता है, बेबी खोल रही है, कोई सिलाई करे, कोई कढ़ाई करे, तो कई है जका हस्तशिल्प रो सामान बनावे, मसाला भी घरे तैयार करे, और आरो भी उद्योग घर घर से शुरुआत करे,
1: शुरुआत करें।
0: सूखी सब्जियां हैं, पापड़ अचार जड़ी कई चीजें सो आप रो व्यापार शुरू कर, और खुद ने आत्मनिर्भर है बने बना रही है, और दूसरा ने वास्ते भी वे एक प्रेरणा बने। तो आज एड़ी शख्सियत ने आप आज आकाशवाणी में फोन रे माध्यम से आमंत्रित कर यहाँ, जका गृह उद्योग रे मायने आप रो व्यवसाय शुरू कर आप रो एक अलग पहचान बनाई है। तो चलो सुनावा आपने फोन रे माध्यम से गृह उद्यमी खुशबू लक्ष्यकार सु भावना लखारारी बातचीत, जिसकी प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ी, संयोजन है मनीष सोलंकी रो।
1: आकाशवाणी रे गणगौर कार्यक्रम रे

0: પ્રાંગણ રે માયને ખુશ્બુજી આપરો ઘણી માન સ્વાગતે ઓર આપને ઘણી માન રામ રામ સા
1: હમા ગણી સા મે ખુશ્બુ
0: જી તો ખુશ્બુજી આપ ઇતો બડિયા ગ્રહ ઉદ્યોગ ચલા રહ્યા હો તો આપ મે એક સવાલ કરું કી આપ ઇન ગ્રહ ઉદ્યોગ ની શરૂઆતે બા કદે કરી હી ઓર આપ ક્યું કરી હી
1: મે ગ્રહ ઉદ્યોગ કી શરૂઆત હમારે 26 અગસ્ત 2025 કો કી થી લગભગ એક સાલ હોને માં આયા
0: જી જી तो आप क्यों करी ही
1: हमने इसलिए की कि हमारे राजस्थान के लोग बाहर रहते हैं तो हम राजस्थान की खान पान परंपरा वो स्वाद लोगों के पास पहुंचा पाए।
0: अच्छा अच्छा जी जी हाँ। और देखो आप गृह उद्योग चला रहे हो तो इनमें आप कह रहे हो कि राजस्थान रे लोगों ने राजस्थानी तक आ चीजा पहुंचा सका तो कौन सी चीजा है जो आप तैयार करिया करो हो
1: देखो आपने सीजन बाय की उतना सीजन है जैसे ठंड है गर्मी हो जैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे गर्मी के हिसाब से अचार चलता है ठंड में आपने राबोड़ी मूंग बड़ी होती है जो वो खराब नहीं होती लंबे समय तक चलती रहती है राबोड़ी मूंग बड़ी हमारी राबोड़ी मूंग बड़ी अचार खींचे पापड़ चकली जैसे मखाने की मिर्ची हल्दी पाउडर धनिया पाउडर ये सारे जो सारे प्रोडक्ट होते हैं किचन के यूज में लेते हैं अपने रसोई घर में मसाले का वो सारे हम एकदम देसी तरह से यूज में लेते हैं।
0: जी जी तो आज का बड़ी और रबोड़ी आप बनाए करो हो यदि पारंपरिक विधि कहीं है खुशबू जी
1: पारंपरिक विधि देखो रबोड़ी आपने पहले चूल्हा पे बनावा यूं नहीं कि आपने गैस पे बना दो गैस पे ऐसा कहीं भी नहीं करा आपने चूल्हा पे बनावा चूल्हा पे बनाए एकदम खाटी छाछ में अगर मक्की की हो ज्वार की हो एकदम खाटी छाछ में बना बड़े भिगोन अंदर रख बड़े चूल्हा पे रखा हांडी बड़ी हांडी रखा 10 किलो 20 किलो 25 किलो विद 3-4 घंटे तो बड़े पकावा पकान डायरेक्ट धूप में सुखावा इसको हम घर के सब जने मिलके बढ़िया हमने धूप में सुखान बड़े तैयार करा
0: जी जी और बड़ी बड़ी की कर बना
1: मूंग बड़ी हो जाती वो अपने खेत से लेकर आते मूंग अपने एकदम साफ सुथरा मूंग लेकर आते फिर घर पे आराम से भिगो के रखते 10 किलो हो या 20 किलो अच्छे भिगो के सुबह मॉर्निंग में फिर अपन यूज में लेते हैं छिलके सारे उतर जाएंगे फिर शाम की ठंडी है ठंडी में होते वड़ी करते हैं जो ठंडी में टेस्ट भी अच्छा होता है वो हाथों से करते हैं पूरी फैमिली में।
0: अच्छा अच्छा और देखो कि आप सूखी सब्जियां भी ये जो कबाब भी तैयार करिया करो तो ये जो की सूखी सब्जियां है बिने लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने वास्ते कई कई सावधानियां रखनी चाहिए।
1: देखो लंबे समय तक सूखी सब्जी रह भी जाती है बट वो की मौसम होता ना मौसम के हिसाब से अपन को ध्यान रखना पड़ता है मौसम जैसे नमी हो जाती है नमी से वो खराब हो जाती है तो इसकी वजह से अच्छे से बॉक्स में अच्छे से पैक करके रखना पड़ता है और मौसम जैसे धूप आती तो बार बार धूप में दोगे तो वो खराब नहीं होती है।
0: अच्छा अच्छा समय समय में धूप देना भी जरूरी भी है
1: समय समय पे आप धूप देना चाहिए और इसको अच्छे से पैकिंग करके रखना चाहिए और राबोड़ी मूंगबड़ी ऐसी होती है वो खराब नहीं होती अगर आप इसको धूप में रख दोगे ना तो एकदम साफ सुथरी रह जाती है और अच्छी रह जाती है कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं पड़ते हैं।
0: अच्छा तो 12 महीने तक आप रख सका है
1: हाँ जी मैम आप आराम से रख सकते हो अपनी देसी है हम मथाने के है तो एकदम देसी तरह की यूज में लेते हो घर से स्टार्ट किया है तो मैंने देसी किया है तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो गया बिल्कुल भी मिलावट 1% भी नहीं है अपना है जो पूरा प्योर है।
0: जी जी तो आप ये उत्पाद रे महीने घर रो देखो स्वाद बनी ओड़ी रेवे घर की गुणवत्ता बनी ओड़ी रेवे इन्हें बनान रखने वास्ते आप काई करिया करो हो आप रे उत्पाद रे महीने
1: आपने देखो घर का स्वाद बनाने के लिए घर के मसाले यूज में लेते हैं।
0: अच्छा।
1: घर के मसाले यूज में लेते हैं जो अपने दादा दादी होते वो अपने पुराने वाले मसाले होते उनकी विधि लेते उनका विधि उनके मसाले वो यूज में लेते कि अपना माल भी अच्छा रहे हर एक चीज प्रोडक्ट भी लोगों के पास पहुंचे वो भी अच्छा रहे वो टेस्ट में भी अच्छा बढ़े हर एक चीज अपने देसी की तरह होता है अपने मार्केट वाले मसाले लाके ऐसा कुछ भी नहीं अपने मखाने की मिर्ची होती है आपको पता ही है हमारे घर के पीछे ही खेत है वहां से हम लेकर आते हैं तो अच्छे पाउडर हो जाते हैं उस देसी यूज में करते हैं हम ऐसे मार्केट वाला मिलावटी 1% भी नहीं है अपना।
0: जी जी जी एकदम घर वाला है जो घरे चक्की में पिसान आप काम में लिया
1: हाँ, बस हमने घर में चक्की है जी में पिसान बड़े हमने प्रोडक्ट यूज में लेवा।
0: अच्छा इन वास्ते स्वाद है जो वो घर जोड़ो बनी ओड़ो रहे
1: हैं घर जोड़ो है बस इकेले मैं घरू स्टार्ट की दो है आपने घर जो टेस्ट में सबके पास पहुँचाओ सो मैं जो भारत में सब जगह पहुँचना चाहे की आपने घर को टेस्ट बस।
0: जी जी जी तो ये इन काम रे मायने आपरे देखो आपरे घर परिवार रो है वो कितो सहयोग बनी ओड़ो रही है कितो सहयोग मिलियो आपने
1: देखो મારો પૂરો પૂરો સપોર્ટ મારો સસરાલ વાળો હે મારો પીર વાળો ભી સપોર્ટ મે સસરાલ વાળો દેખ મારો હર એક કદમ પે મારો સાથ દેવે અગર મે પહેલી મે વિડિયો બનાવ

0: जाती थी जोधपुर, तो लोग पहले धूप में जाना, बस में जाना, मैं मेरे देवर वीडियो बनाने के लिए जाते थे। काफी लोग बोलते थे उनको पसंद भी नहीं आता था और काफी लोगों को पसंद आता था। हर एक चीज देखो मेरी सपोर्ट में बहुत होता था और मेरे साथ, मैं कभी हार भी मानती थी तो मेरे साथ मुझे बोलते थे बेटा आपने हार नहीं मानी, आज नहीं कल तो अच्छा होगा अपना। इसी कदम पे मैं आगे बढ़ी, आज मेरा सब कुछ है, मेरे सास ससुर ने, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया।
1: जी जी देखो परिवार और सपोर्ट रही हो जो आप आज आगे बढ़ रही हो, है नहीं?
0: हाँ, आज मेरे पूरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ।
1: जी जी तो देखो खुशबू जी की वो काम आप शुरू करियो तो आपने कोई आर्थिक स्थिति रे मायने में कोई बदलाव आयो, कोई आपने परेशानी रे सामना भी करना पड़ियो कहीं?
0: देखो सब मु कोई भी काम करे सब मु ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा। पैसा के बिना कुछ भी काम नहीं होता है।
1: जी जी
0: ठीक है। एक हम मिडिल क्लास फैमिली से है
1: जी,
0: आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन मेरे घर वाले ने, मेरे हस्बैंड ने जो जॉब करता है, मेरे हस्बैंड जिसकी जो सैलरी होती है उससे इकट्ठा करके हमने हमारा काम स्टार्ट किया, गृह उद्योग घर पे स्टार्ट किया है। मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट करके पैसा, हमने ऐसे लोन लेना ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपना जो भी था थोड़ा बहुत था तो थोड़ा से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया।
1: जी जी घरू काम भी शुरुआत करी है।
0: हाँ, अपने घरू काम स्टार्ट की दो, जितना हो उन स्टार्ट की दो, आपने लोन लेनो अचन कहीं भी नहीं की दो, बस अपनी फैमिली आपने साथ दी दो और आपका काम स्टार्ट की दो।
1: जी जी जी मतलब के नहीं के अणु तो माथे नहीं करने जितो आपरे कन हो वटू ती शुरुआत
0: हाँ,
1: करी हो
0: जितरो है वे जितरो ही आपने करनो।
1: तो आज आपकी निस्थिति माते हो, आज आप इतना टाइम हो गया, आज आपकी निस्थिति माते हो?
0: देखो पहले हमारी स्थिति थोड़ी सही नहीं थी, अब धीरे धीरे काम करते करते बहुत अच्छी हो गई है। जितना पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हमने, बट आज हमने स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी।
1: जी जी और देखो खुशबू जी की आज गणगौर प्रोग्राम हो रही है अपनी बहनिया, तो आप ये जो गणगौर प्रोग्राम होने वाली बहना ने आप तरह कही कहनी चाहो?
0: मैं भी एक औरत हूँ, शादीशुदा औरत हूँ, हमारे भी घर जिम्मेदारी बहुत रहती है, आपको पता है जिम्मेदारी हर एक औरत के ऊपर होती है।
1: हाँ,
0: वो जिम्मेदारी भी पूरे की, बच्चे भी होते हैं उनको भी पूरा करना पड़ता है। 2 घंटे अपने काम के लिए भी आप स्टार्ट करो, भले सिलाई हो, भले खाना हो, भले कुछ भी काम आता हो, छोटा कभी कुछ छोटा काम नहीं होता है, आप स्टार्ट करो, कुछ भी घर पे बैठा आप स्टार्ट करो, भले सोशल मीडिया की वीडियोस हो, कुछ भी काम हो। कभी कोई लड़की, कोई भी महिला कभी किसी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, हर चीज को आगे बढ़ो। आज अपना हस्बैंड सपोर्ट है, अपनी फैमिली सपोर्ट हो तो हर एक चीज में आगे बढ़ना चाहिए। घर बैठे स्टार्ट करो ना, ज्यादा कुछ नहीं, अपन बाहर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, पर आप घर से स्टार्ट करो।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अगर आप लोगों को किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ जाके मुझे भी आप मैसेज कर सकते हो, किसी भी चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ।
1: जी जी बिल्कुल। देखो खुशबू जी आज आपरी बातों हूँ घनी जी की महिला है बेने, देखो आज शक्ति आई है, पावर आयो है के नहीं, देखो ये कर रहा है तो मैं भी आज घर बैठा किन की कर सका, है नहीं?
0: हाँ, बस यही बोलना चाहती हूँ हर एक लेडीज को, हर एक बहन को यही बोलना चाहिए, बस काम करना स्टार्ट करो। मैंने भी स्टार्ट किया है, आप लोग भी स्टार्ट करो।
1: जी बिल्कुल खुशबू जी, तो आज आप अमूल्य टाइम निकाल मानसो बात करी, बहुत ही चोखी अपनी बेनिया ने जानकारी दी, इन वास्ते आपरो घणो घणो ही धन्यवाद है और राम राम सा।
0: राम राम।
2: अबार आपा सगला सुनेहा गृह उद्यमी खुशबू लक्षकार सु भावना लखारारी फोन आउट बातचीत जकारी प्रस्तुति ही राजेश लामरोडरी, संयोजन हो मनीष कुमार सोलंकी रो।

0: बिल्कुल कोमल, बारे तो घणी निकल जावा, पण बारे निकलता ही वो तावड़ो है वो तब तो अपने घणो आखरो लागे है।
1: बिल्कुल।
0: पण कई है कि कई एड़ा काम जरूरी विया करे है भी में अपन तावड़ा में निकलनो जरूरी ज विया करे है। तो अपा अगर तावड़ा में बारे निकल भी रिया हा तो अपने नहीं अपने शरीर ही थोड़ी सी देखभाल करनी बहुत जरूरी रिया करे है, क्योंकि वो तब तो तावड़ो है इनमें पसीनो ही आवे, धूल मिट्टी होवे, यू कही है कि अपनी त्वचा है बार रुखी हो जाए करे, बेजान वे जाया करे है। तो कई अड़ा छोटा छोटा उपाय है वे ने अपा अपना सका, वे ने अपना ना अपने त्वचा ने जो एकदम सही रख सका या चमकदार रख सका। हाँ तो इरे वास्ते अपन कई करना कि पूरे दिन अपने खूब तो पानी पीवनो है ताकि शरीर कई है कि हाइड्रेट रहेला।
1: बिल्कुल।
0: और आप चाहो तो नींबू रो पानी ले लो, छाछ ले लो, नारियल रो पानी ले लो, किन की कहनी के पेय पदार्थ है वे अपन लेवता रहना चाहिए।
1: बिल्कुल भावना जी, पेय पदार्थ रो आप बात कर रहे हो, पर एक समस्या भी हो जाए कि आप जी धूप में निकला तो अपनी चमड़ी पर जलन है जकी हो
0: हाँ
1: जाए
0: हो
1: करे,
0: जाए
1: तो
0: करे
1: इरो भी उपाय है जो बेनान बताओ।
0: बिल्कुल, अपने कई करना चाहिए कि या तो आप निकल रहे हो तो टोपी लगाई लो, या पचे एक दुपट्टा सु मुंडा ने बांध लो, या छातो ले लो, या वो तो सन ग्लास है वो जरूर पहनना चाहिए, हो सके तो सीधी धूप है वह अपने त्वचा पड़ने लागे है।
1: बिल्कुल, बाहू तो देखो आप धूप थोड़ा सा बच रह सका, लेकिन लू की लू का थपेड़ा जका बारे में आप बहुत ज्यादा पड़ रहा है वासु कुछ ही कोनो होना। कुछ एड़ो टिप बताओ जका अपन जो है कि थोड़ा सा चेहरा पर है जो ठंडक रह सके।
0: बिल्कुल। तो देखो कि आप बता रहे हो कि लू रे थपेड़ा चेहरा माते लाग जाओ, तो कई अड़ा छोटा सी फेस पैक है वे बनाना अगर आप लगा दानी तो अपन त्वचा पर निखार आ जाया करे है।
1: बिल्कुल।
0: तो अपन ने कई करना है कि बेसन ले लेनो है थोड़ो सी, और थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है, और आप पली मात्रा चाहो तो 2 चम्मच बेसन ले लो, 1 चम्मच दही ले लो, इन्हें थोड़ो सो हिला और इन्हें चेहरा माते लगा दो, 15 मिनट तक रख दो, और 15 मिनट के बाद में कई करना कि ठंडे पानी से धो लेना है। भी कही है कि तो

0: सॉफ्ट भी हो जाए और कई साफ भी हो जाए ला।
1: बिल्कुल। और देखो कई बहना भी है जबकि बाहर निकले तो भी ऊपर सनबर्न क्रीम लगा हुआ, यानी कि सूरज की
0: हाँ
1: जबकि किरण है बा अपने ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाले, तो
0: हाँ
1: विन वास्ते भी आपा कुछ मास्क भी आपा घरे तैयार कर
0: तैयार कर
1: सका,
0: सका।
1: जिया कि चंदन और एलोवेरा है तो विन आपा थोड़ा सो मिला और गुलाब जल रे माइने जरूरत रहे हिसाब से डाल और पेस्ट बना ला, और धूप में जावन सो 20 मिनट पहले भी
0: पहले
1: लगा लो,
0: हाँ
1: बस दो आप धूप में निकल सको, या फिर धूप लौटन रहे बाद में भी आप इन्हें लगा थोड़ी सी देर रखा तो अपना जकी जलन हुए बा कम हो जावे और ठंडक भी देवे।
0: यही देखो कि मुल्तानी मिट्टी रे बारे में तो आप सगला सुनी उड़ी है, तो 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लो, उनमें ने थोड़ो सी गुलाब जल डाल दो, यूरो पेस्ट बना और चेहरा माथे लगा दो, और जब वो सूख जावे तभी ना अच्छी तरीके से धो लो।
1: बिल्कुल। और तिल रो तेल और हल्दी रो सीरम भी एक प्राकृतिक रूप से सनबर्न रो काम करिया करे, तो 2 चम्मच तिल रो तेल में 1 चुटकी हल्दी मिला और वीर मायने गुनगुनो तिल रो तेल अगर आप डाला और वी ने अच्छे से हल्का हाथ से मालिश करा तो इमें जका एंटी ऑक्सीडेंट गुण हुए बापनी त्वचा ने डैमेज होने से बचावे।
0: बिल्कुल, तो सगली बहना ने वही कहनी चाहूँ कि आप इन ताव डारे महीने और तपती धूप त्रे महीने जरूर ए चीज अपना और आप ध्यान रख जाओ।

0: एक चुटकी हल्दी मिला और वीर मायने गुनगुनो तिल रो तेल अगर आप डाला और वीर ने अच्छे से हल्का हाथ सु मालिश करा तो इमें जका एंटी ऑक्सीडेंट गुण हुए बापनी त्वचा ने डेमेज होने से बचावे।
1: बिल्कुल, तो सगली बहना ने वही कहनी चाहूँ कि आप इन ताव डारे महीने और तपती धूप त्रे महीने जरूर ए चीज अपना और आप ध्यान रखो।

0: बिल्कुल भावना जी, गर्मियों की बात आप कर रहे हैं। हाँ, तो
1: हम्म,
0: मेहंदी रो जो को योगदान है वो भी गर्मी में ठंड जबकि गर्माहट है बा मेटन वास्ते आपा काम में लेवा ही। हाँ,
1: हाँ
0: क्योंकि मेहंदी आंगनारी रौनक तो हुई है, साथ ही साथ आ शरीर ने ठंडक देवन रो काम भी करया करे।
1: बिल्कुल, कह नहीं कि अपनी बहनिया ने साज और सजावट करने रो घणी कोट भीया करे है। कोई भी देखो कि तीज त्योहार या पछ कोई ब्याह शादी आवे नहीं तो अपनी बहनिया हरलों पहले ओच लेवे कि मन मेहंदी कद लगानी है नहीं, तो वह
0: बिल्कुल
1: जब मेहंदी लगा में नहीं तो वे बहन है जो घड़ी घड़ी आपने फरूक फरूक न हाथा ने देखिया करे है कि वे सजी उड़ी कितनी चोखी लागे है। पर आ मेहंदी है बस सजावट तो देवे, ये अपने शरीर वास्ते ही घनी चोखी दिया करे, अपन शरीर ने है वह ठंडक दिया करे है। और ध्यान है कोमल जी के पहले रहे टेमरे महीने तो कई करता हाँ कि मेहंदी रहा पत्ता हाँ बिने तोड़ हर सुखा दिया करता, सुकान बिने पीस और बिने रात भर भिगोन हाथा पगारे और माथा रे लगा दिया करता हाँ। उनाड़ो आवते ही वो काम हगड़ू पहले करता हाँ, ब्यू कही है कि शरीर ने ठंडक मिल जाया करती है।
0: बिल्कुल
1: और ठंडक तो मिलती भी रहते कई फायदा हुआ करता हाँ, क्योंकि मेहंदी री तासीर ठंडी है वे, इन वास से हाथा पगार महीने जो को भी के नहीं जलन वगैरह हुए बिने कम करिया करे है। और मेहंदी है वो बालारे भी लगाया करे है, वे कह नहीं कि बालार में लगाऊं माथा रे महीने ठंडक होया करे है। और देखो कि त्वचा संबंधी जगह भी कोई भी विया करें दाद है गमोरिया है खुजली है ब्यों भी मेहंदी लगाना बीमें भी आराम मिलिया करे है।
0: बिल्कुल। और अब बात चमड़ी में जब आप मेहंदी लगावा ठंडक देवन रे वास्ते, तो मेहंदी ने सादा पानी में या गुलाब जल में घोलर लगावा, और अगर खाज खुजली हुए तो मेहंदी ने नीम रा पानी में और रस नीम रा पानी रो जो को रस हुए बीर माई ने घोल लगाना चीज है। और अगर खाटा दही में आप मेहंदी घोलर लगावा तो चमड़ी री जकी खुश्की हुए बा दूर हुआ करे। और
1: बिल्कुल
0: एक आधो नींबू निचोड़ मेहंदी में लगावा तो इन्फेक्शन है जको मिटे और माथा पर खुजली है जकी कौन चले। और मेहंदी घोलते टाइम अगर बीर ने मायने आपा 2 चम्मच आंवला पाउडर मिला ला तो बाल चमकीला हुए और गहरा भूरा हुआ करे। और अगर बाला ने अपन कत्थे ही रंग देनो है, थोड़ा सो लाल रंग देनो है,
1: हाँ
0: तो पानी की जगह चुकंदर और रस है जो को आपा डाल सका।
1: हाँ और आज कोई मेहंदी है बा अपने खुशबू और ठंडक और कहवे नहीं कि मन ने शांत राख्या करे, एक ताज की रोपा ने एहसास विया करे है।
0: बिल्कुल। और भी मेहंदी से जुड़ी बात करा ला, सुनाओ आपने एक प्यारो सो गीत।

0: बिल्कुल मेहंदी रो रंग जी हाँ तेली में बिखरे भी यही इरो जी इरी जो की सुगंध हुए भी सु या फिर इको पौधो हुए वो घर आंगना री हवा ने भी साफ और सुथरो रखे। इकी महक जकी है भावना जी इरी सुगंध जकी है वह मच्छर और जितना भी काटिया
1: कीट हो गए
0: कीड़ा हुए
1: हाँ।
0: वाने घर सु दूर रखे। और अरे आप बताइए हो कि पाना रो रस हुए जो को चमड़ी रा दो रोग है जका दूर करे और
1: हाँ
0: इरा जका फूल हुए वो उनाड़ा रे मायने भी भीनी भीनी सुगंध देवे जकी मन ने शांति देवे। और सबसे बड़ी बात ये आ है कि ओ जो को पौधो है वो
1: हाँ
0: कड़क उनाला रे मायने भी कम पानी में भी टिकेड़ो रेवे।
1: टिक्योड़ो
0: इनके वास्ते
1: रहे।
0: अपना राजस्थान में इन्हें उगाने रा घना ही फायदा है।
1: इन्हीं कई विधि भी है जिका कोमल अपा किन विधियों किन तरह आप इन्हें उगा सका। तो देखो इन्हें बीज से भी उगा सका, इन्हें टहनी काटने भी उगा सका। तो कई करनो कि एक स्वस्थ पौधा री लगभग 6 से 8 इंच री लंबी पेंसिल जितनी पतली टहनी काट लेवनी, और नीचे री जिकी पत्तिया हुए है टहनी री वे हटा देवनी, और वीर ने एलोवेरा जेल या शहद लगा देवनो। और टहनी ने कई करनो कि गमले री 2 और 3 इंच माटी री गहराई ताणी दबा देवनो है, और इन्हें नमी देवन रे वास्ते कोई पारदर्शी प्लास्टिक शू ढक देवनो, और इन्हीं टहनी रे जड़ और पत्तिया आवन रे मायने 1 से 2 महीना रो वो टेम तो कम कम लागे करे हैं।
0: बिल्कुल भावना जी। और मेहंदी रा पौधा ने ज्यादा नमी पसंद हुआ करे।

0: जरूरत से ज्यादा अगर पानी देवा तो वी रिजड़ जकी है बगड़ जावे। इनके वास्ते एक मिट्टी ने सुकन रे बाद ही एक पानी दिया पचे दोबारा पानी देना है। और हमेशा मिट्टी सीमेंट रा गमला में ही है जो को इस्तेमाल होना चाहिए, मिट्टी या सीमेंट रा गमला में ना, क्योंकि प्लास्टिक में पानी है जो को रुक जाया करे। और
1: हाँ
0: गमला रे निकासी रे वास्ते नीचे एक छेद होना जरूरी है।
1: जरूरी
0: और
1: है,
0: किया करे कि पनपन रे बाद में 5-6 घंटा री धूप जकी है बस सीधी धूप इन्हें देनी
1: देनी
0: जरूरी है।
1: चाहिए।
0: और पौधा री हरी भरी ग्रोथ रे वास्ते अपने महीना में एक बार खाद है जो को जरूर डालना है। और साल में एक बार फरवरी मार्च या मानसून रे बाद में इरी सूखी और कमजोर शाखा है जकी वह बिने गहरी छटाई विरी करती रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। और कोमल जी टेन ही रही तो देखो अब आर आप बात करिए और 20 भी ओ पौधो है वो उगया करे हैं, तो जो को बीज है बाने 12 से 24 घंटा रे वास्ते अपना कई करनो कि हल्को गुनगुना पानी रे मैंने भिगोन राख देना है और गमला रे मैंने जिकी माटी हुए है और जैविक खाद वे वेण मिश्रण कर और बीजों ने 1 और 2 इंच गहराई तानी अंदर तानी डूबो देना है, विने दबा देना है और पानी रो छिड़काव कर देना है ताकि माटी कई है न माटी रे मैंने नमी बनी ओड़ी रहे। पण वो ध्यान रखना कि पानी घणो भरियोड़ो नहीं रहे है, घणो पानी भरियोड़ो तो अति तो केवे नहीं कि नुकसान भी आ करे है। और ये जगह इन जगह बीज अंकुरित वे है वे 14 से लेन 42 दिन ताणी विया करे है।
0: बिल्कुल। और मेहंदी रा पौधा पर भी है तो क्या भावना जी कीड़ा कौन लागे, पर फिर भी अगर वीरे मायने कोई सफेद कीड़ो
1: लाग
0: या फिर कोई
1: जावे।
0: हाँ
1: हाँ
0: फंगस दिखे तो वीरे नीम रो तेल री कुछ बूंदा पानी में डाल और स्प्रे कर सको और आप री रख रखाव रे साथ ही मेहंदी रो पौधा ने आप उगा सको।

0: देखो कोमल, गर्मी तो घनी पड़े हैं,
1: हम्म,
0: कहवे नहीं कि कोई काम हो जावे, नहीं तो ही घर से बाहर निकलना रो मन ही को नहीं करे, घर में ही रहे, वहां एसी और कूलर आगे बैठा रहे वहां। पर
1: बिल्कुल
0: आज की एसी है वो अपने ठंडक तो देवे ही है, बाहर ही ठंडक देवे, अंदर अपने स्वास्थ्य वास्ते कठे न कठे कहवे नहीं कि नुकसान ही जिया करे हैं। तो जी की आ एसी री ठंडी हवा है ब्यू कही है कि अपनी जी की त्वचा ने जी की प्राकृतिक जी की नमी मिले है नी वाह खींच लिया करे है। ब्यों कही है कि जी की त्वचा ये बार रुखी रुखी हो जाया करे है। और कई बार कही होवे कि अपा कटी बारे गयोड़ा रहो और गरम तपियोड़ा हुआ और एकदम कही करा कि ठंडक देवण वास्ते एसी रे कमरा में आ जाया करा हाँ और बटे बैठ जाया करा हाँ। ब्यों कही है कि अपने जिकी मांसपेशी आए वे सिकुड़ जाया करे, बीमें ऐंठन ऐठे जड़ा हो जाया करे है। तो कहवे नहीं कि अपने शरीर वास्ते नुकसान करिया करे है। और अगर देखो कि लंबे टाइम ताने अपा एसी रे मई नीच बैठा रहे वहाँ तो अपने कह नहीं के कई जोड़ों रा दर्द होने लाग जाए, गर्दन दर्द होने लाग जाए, पीठ में दर्द होने लाग जाए, कई तरह रेड़ा दर्द है बे होने लाग जावे है।
1: बिल्कुल होने लग जावे। देखो नुकसान तो वही है, आप यहाँ कौन खेवा क्यों, अपने वास्ते फायदो कौन करे, अपने गर्मी से बचावे, लेकिन ये रो इस्तेमाल भी विभिन्न तरीके से होनो चाहिए कि अपनी सेहत है जबकि भी सही बने
0: सही
1: नहीं
0: बनी
1: रहे,
0: ओड़ी
1: तो
0: रेवे।
1: ये रो इस्तेमाल करो अपन खुद री सेहत रो ध्यान रखकर करो, क्योंकि लगातार अगर आप ऐसी रह संपर्क में रहे वहाँ तो जो को बाहरी मौसम है वो

0: हुए बीतो लेना, ठीक है। तो कई करना इन्हें बनाने वास्ते कच्चे आम ने उबाल देवनो है, उबाल परो अनवीन गुद्दो निकाल देवनो है। गुद्दो निकालन एक बर्तन में मैंने वो उबलियोड़ गुद्दो और कालो नमक, जीरो, पुदीने री पत्तिया और पानी और बर्फ डाल देना, और हाँ बिना चोखो हिला देना, हिला और गिलास में डाल अन चोखो पी ला, तो केवे नहीं कि अपने अंदर ही जगह ठंडक है वह बनी उड़ी रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बनी उड़ी रहे। और एक और देखो परंपरा मान लो, चाहे कोई मान लो, आजकल आप
0: हाँ
1: देखा कि आज यहाँ गर्मी आई तो ज़्यादातर लोग ये भी कोल्ड ड्रिंक की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी
0: हाँ
1: मेहमान आई तो चाय तो चलो गर्मी है तो कोई कम पीनी पसंद करे,
0: हाँ
1: तो लोग जो को कोल्ड ड्रिंक पुर से बन।
0: हाँ
1: लेकिन देखो आज है 20 मई और 20 मई ने राबड़ी दिवस है जो को अपन मना रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल
1: तो क्या करे कि मारवाड़ री शान है राबड़ी और छाछरो मान जको है वो सब ज्यादा हुआ करे। मारवाड़ में मेहमान नवाजी में राबड़ी छाछरी जगह सबसे ऊपर हुआ करे। तो
0: ऊपर
1: आप
0: लिया
1: सगला
0: करें
1: ने अपील करनी है कि जो भी मेहमान आवे वाने राबड़ी छाछ है जो कि परोसनी है।
0: बिल्कुल।

0: निकाल परो अनवीन गुद्दो निकाल देवणो है। गुद्दो निकालन एक बर्तन में मैंने वो उबलियोड़ गुद्दो और कालो नमक जीरो पुदीने री पत्तिया और पानी और बर्फ डाल देना और हाँ बिने चोखो हिला देना हिला और गिलास में डाल अन चोखो पी ला तो केवे नहीं कि अपने अंदर ही जगह ठंडक है बहुत बनी उड़ी रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बने उड़ी रहे। और एक और देखो परंपरा मान लो चाहे कोई मान लो, आजकल आप देखा कि आज यहाँ गर्मी आई तो ज़्यादातर लोग ये भी कोल्ड ड्रिंक की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी मेहमान आई तो चाहे तो चलो गर्मी है तो कोई कम पीनी पसंद करे तो लोग जो को कोल्ड ड्रिंक पुर से बन। लेकिन देखो आज है 20 मई और 20 मई ने राबड़ी दिवस है जो को अपन मना रहे हैं।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो क्या करे कि मारवाड़ री शान है राबड़ी और छाछ रो मान जको है वो सब ज्यादा हुआ करे। मारवाड़ में मेहमान नवाजी में राबड़ी छाछ री जगह सबसे ऊपर हुआ करे। तो
0: ऊपर
1: आप
0: हुआ
1: सगला
0: करें
1: ने अपील करनी है कि जो भी मेहमान आवे वाने राबड़ी छाछ है जो की परोसनी है।
0: बिल्कुल।

अभी आपने सुना कार्यक्रम गणगौर, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में

0: कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है।

0: कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
1: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है।

0: श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी। श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर। श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
1: जी,
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
1: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रतिवर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी। बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी,
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी,
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello, children.
4: Hello, ma'am.
5: Hello, ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
6: We

0: एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: राजू स्कूल से आ गए तुम?
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।

0: राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
1: हाँ,
2: देखभाल? वो कैसे?
1: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
2: अच्छा।
1: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
2: ये तो मैं जरूर करूँगा।
1: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
0: राजू बेटा
2: जी?
0: अच्छा अब घर चलें?
2: जी धन्यवाद मालिक काका।
1: अरे बेटा
0: चलो बेटा।
1: जी
2: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। मीडियम वेव चैनल पर हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी दूसरी

राम राम साथीड़ा, छिंजियारी 5 बज गए है और इन टाइम आप सगड़ा ने उड़ीक रहा करे आपने दैनिक कार्यक्रम युवाणी री। पण आज है बुधवार और इन दिन आप सगड़ा ने खास उड़ीक रहा करे आपने मैड भाषा रे कार्यक्रम निम्बोड़ी री, जिनमें मैं आप री फरमाइशा ने कार्यक्रम में शामिल करया करूँ और लोकगीत और लोक भजन सुनाया करूँ। तो आज रो इन कार्यक्रम री शुरुआत करा इन प्यारे से गीत लेरे सागे।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किट बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किट बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: साथियों आज रो निम्बोड कार्यक्रम लेना हाजिर हो यहाँ मैं दो रेडियो साथी, मैं आपके साथ बोम सिंह और हमारे साथ है
6: साथीरा, मैं आप रेडियो साथी रघुवीर सिंह। साथीरा इन एक घंटे के कार्यक्रम में मैं घनी सारी आपसे बातें कराला, आपरे भेजड़ी फरमाइशा ने शामिल कराला, आपरी पसंदरा गाना भी सुनावाला। तो साथीरा जका साथी हमारे साथ नया जुड़िया है वहाँ नए फरमाइश भेजन रो पतो में बता देवा, पतो लिख ले रहो आप व्हाट्सअप रा नंबर 94133 29359 इन नंबर माथे आप आपरी फरमाइश माने भेज सको हो।

0: साथीना आबार आबा बहुत ही चौकी राजस्थानी लोक रचना सुनी। साथीना हर राजस्थानी कार्यक्रम रे मायने निमोली रे मायने आपने एक राजस्थानी शब्द दिया करा हाँ। आज रो शब्द है माड़ियो या फिर माड़िया। अपरे गांव सु घर सु मकान सु जुड़ो शब्द इन रो अर्थ आपने ध्यान हुए तो आप री फरमाइश रे साथ इन शब्द रो अर्थ भी माने जरूर भेज दो। हमारा व्हाट्सअप रा नंबर 94133293569। इन नंबर माथे आप आपरो नाम आपरो पतो और आपरी पसंद रो राजस्थानी लोकगीत माने भेज जरूर भेजो।
1: साथीडा औकात आयो है टिकमगढ़ मध्य प्रदेश हूँ भेजन वाला है बिजेंदर विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम और आशीष।
0: गांव मेलाना तहसील बावड़ी जोधपुर से आप साथे जुड़िया है चलाराम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनिता और फूली देवी मेघवाल।
1: कलानौर से रविंद्र शर्मा किरण नितिन और मयंक शर्मा।
0: खेतेश्वर कृषि फार्म तहसील सिंहदरी सु अपार साथे जुड़िया है नाग सिंह राजपुरोहित भावेश कृष्णा तनवीर और परी।

0: सादिरा आगली फरमाइश आपाने लिख रहे भेजी है गांव चापासर जिला फलोदीसू भेजने वाला रेडियो श्रोता है प्रेम कुमार प्रजापत अदुराम राधा लाचा लीला कुमारी संतोष कुमार कोमल कुमारी और तरुण कुमार प्रजापत
1: पटेल कॉलोनी राजकोट हूँ अजिता पॉल हेमा और परमिला पॉल
0: गांव कगौ बाड़मेर सु अपारे साथे जुड़िया है पुखराज प्रजापत और पुखराज भार्गव
1: इंदिरा विहार दिल्ली सु बेबी अंसारी निशा और डब्ल्यू अंसारी
0: गांव मिठा तहसील सिणदरी सु अपारे साथे जुड़िया है नाग सिंह भावेश और गजेंद्र
1: सनी चौक खंडवा सु राधिका दुर्गा कुमारी और अनिता राज
0: गांव होंडू जिला बालोतरा सु अपारे साथे जुड़िया है थानाराम शर्मा और इंरा परिवार वाला तो सातरा इंरी पसंद माते अपना सुनावा आओ अगलो राजस्थानी लोक भजन।

0: सरोज चितारा, पंकज करण और अर्जुन।
1: मधुबनी बिहार सुं मोहम्मद साबिर साजिद अली।
0: गांव दोरेखनली ढाणी टापू सुं आपा साथे जुड़िया है विष्णाराम बालियान, विदामी देवी बरवड़, सुनील, पूजा, सुरेश, सुभाष और श्याम सुंदर।

0: सगरा आपरी फरमाइशा हमारे तई लगो लग पूग रही है। अगली फरमाइश माने लिख रहे भेजी है खांडा फलसा मियाँ चौक जोधपुर सू। भेजने वाला रेडियो श्रोता है अब्दुल हमीद चीपा, रईसा बानो, अब्दुल अहमद चीपा, अब्दुल मुशवीर, आयशा बानो और फिजा बानो।
1: बालोत्रा सू मोहनलाल प्रजापत, माणक उषा और बाला देवी प्रजापत।
0: पदमपुर जिला गंगानगर सू आपा साथे जुड़िया है मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा।
1: पटेल नगर मालो सू डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, जगनदीप और आरजू जाजोरिया।
0: भोपालगढ़ सू आपार साथे जुड़िया है श्री राम जानी, राजेश, अशोक कड़ेला, घनश्याम सिंह चौधरी और गोविंद।
1: विलयनगर सू अनुश्री प्रदीप।
0: तो साथिरा इन सगले श्रोताओं की पसंद माथे आपा सुना आ अगली राजस्थानी लोक रचना।
2: शादी का गाना है और हाजर उबारे से हो मैं लाल बने न जोश हो धीमेरा धीमेरा चालो थाना घनोरी कमा।

साथी ना, आपरी भेजड़ी फरमाई सा तो बड़ा लाई, पर उनसे पहला बात करा गर्मी रे मौसम में चलन वाली तेज शुष्क और गर्म हवा जकी ने आपा लू कहवा करा। हाँ साथी ना, लू से बचाव सारू खास उपाय जेका आपने आपा ने ध्यान रखना जरूरी है। साथी ना, खास तौर से दिन रा 12 बजे लगातार 4 बजे तई अनावश्यक रूप बाहर जाणु बचनो चाहिए। सूती सू बनुड़ा ढीला कपड़ा आपने पहनना चाहिए। घणे हूँ घणो पानी दिन में पीवण चाहिए। पानी रे साथे नींबू छाछ आम पान ORS घोल भी आपा ले सका। हाँ, भूखे पेट आपने बाहर निकल सू बचनो चाहिए। खास तौर से आपने बच्चा और बुजुर्गों रो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।

युवा साथियों को समर्पित कार्यक्रम युववाणी श्रोता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का बुलेटिन। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

0: उन्हीं के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल

0: अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
0: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को

आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। संध्या 6:36 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर जिले की चिट्ठी, 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। चौपाल सजेगी शाम 7:00। सीमा डेरी गूंज कार्यक्रम का प्रसारण समय रहता है संध्या 7:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप उठाइएगा रात्रि 8:00। साहित्य सुधा का आनंद ले सकेंगे आप रात्रि 9:15 पर। आज आप सुनेंगे राजस्थानी काव्य पाठ कवयित्री रीना तंवर द्वारा। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:00 से, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रोफेसर कविता चक्रवर्ती द्वारा राग विहाग में सितार वादन। ये थे आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब आपको अवगत कराते हैं कल की सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों से। कल यानी 21 मई को आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सवेरे 7:00 से।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। कृषि जगत का समय रहता है दोपहर 1:05 पर। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का समय रहता है सवेरे 8:30 पर। युवाणी आप सुना करते हैं शाम 5:00। धीणेरी बातें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले इस प्रोग्राम को आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। सीमा डेरी गूंज और चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:00 और शाम 7:30 पर। ये थे आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रम और कल की सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं आइए सुनते हैं देश गान।

0: समोस्वर में देशगान आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। श्रोताओं, संध्या के 6:20 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप पहले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे, तदुपरांत आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:42 पर जिले की चिट्ठी के बाद आप सुनेंगे 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह वार्तालापं कृतवान्। उभौ देशौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेषतः सामरिक सहभागित्वेन उन्नतिं कर्तुं निर्णयम् अकुर्वताम्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ भयोत्पादनं मानवतायै गभीर प्रतिरोधरूपेण पश्यतः। डीआरडीओ इति संघटनेन ड्रोन प्रक्षेपितस्य मानवरहित स्पष्टता निर्देशित प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सम्पूरितम्। रक्षामन्त्रिणा एतद्व्यूहात्मकं सोपानत्वेन वर्णितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रस्य जातिगणनायाः निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। अपि च आईपी

0: क्रिकेट क्रीडायां ईडन गार्डन्स इत्यत्र मुंबई इंडियंस दलं कोलकाता नाइट राइडर्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मिलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता, यस्योद्देश्यं प्रमुख क्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुमासीत्। व्यापारस्य निवेशस्य तन्त्रज्ञानस्य रक्षायाः स्वक्षोर्जायाः सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वम् आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरं उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना घोषितं यत् भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेष सामरिक सहभागित्वेन वर्धयितुं निर्णयः कृतः। श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ पक्षौ सहकारं वर्धयितुं विस्तृतं चर्चां कृतवन्तौ। भारत इटली नवान्वेषण केन्द्रस्य स्थापनार्थं च कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। सः अवदत् यत् भारत इटली रक्षा औद्योगिक मार्गचित्रं सैन्योपकरणानां सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च मार्गं प्रशस्तम्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् उभौ देशौ नौवहन क्षेत्रेषु पत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे, नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः अधुना स्वस्य पूर्णक्षमतया साधयितुं समर्थाः सन्ति। गत केषुचित् वर्षेषु भारत इटली देशयोः मध्ये सम्बन्धाः अभूतपूर्वगत्या विस्तारिताः सन्ति, अधुना च निर्णायकं स्तरम् अवाप्नोत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा तस्य इटली देशीया समकक्षीया जॉर्जिया मिलोनी इत्युभाभ्यां लिखिते संयुक्त लेखे उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सौहार्दपूर्ण स्नेहात् विशेष सामरिक सहभागित्वेन विकसितः अस्ति, यस्याधारः स्वातन्त्रस्य, लोकतन्त्रस्य, भविष्यस्य कृते संयुक्त दृष्ट्याधारित मूल्येषु च निहितास्ति, उभौ नेतारौ प्रकाशितवन्तः। नेतारौ उक्तवन्तः यत् यदा वैश्विक व्यवस्थायां गहन परिवर्तनं प्रचलति तदा भारत इटली सहभागित्वं उच्चतम राजनैतिक संस्थागत स्तरेषु नियमित आदान प्रदान द्वारा दर्शितमस्ति। एकविंश्यां शताब्द्यां समृद्धेः सुरक्षां च राष्ट्राणां नूतनाशयस्य, ऊर्जा परिवर्तनस्य, प्रबन्धस्य, सामरिक सार्वभौमत्वस्य सुदृढीकरणस्य च क्षमतायाः उपरि परस्पर समन्वयं प्रतिबिम्बयति इति उभौ उक्तवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन देशस्य रक्षाक्षेत्राय एकं महत्वपूर्णोपलक्ष्यं साधितम्। यस्मिन् मानवरहितं वायुयान

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत

0: जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जांच कर रहा है। इनमें राजस्थान की भी दो घटनाएं शामिल हैं। पाली के अमरपुरा स्टेशन के पास एक घटना में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कोच के अंदर कपड़े में आग लगाने की कोशिश की, जिससे आग लग गई। इसी तरह कोटा में राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की शुरुआत भी बाथरूम क्षेत्र से शुरू हुई बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने आग लगने की हालिया घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रेलवे ने कहा है कि अमरपुरा जैसी घटनाओं में रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रमुख तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा बैठक की। कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं। सभी आउटलेट पर ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। श्री गुप्ता ने नागरिकों से घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण नहीं करने का अनुरोध किया है। साथ ही ईंधन उपलब्धता से संबंधित प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा है। बैठक में आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जीओबीपी और नायरा सहित प्रमुख तेल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां हालात बेहतर और नियंत्रण में हैं। श्री राठौर ने आमजन से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल का आवश्यकता के अनुसार सोच समझ कर उपयोग करें।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत है।
0: प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अब बच्चों को उपमा की जगह पौष्टिक न्यूट्री पुलाव परोसा जाएगा। उपमुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आज शासन सचिवालय में इस नए न्यूट्री पुलाव के सैंपल का स्वाद चखा। उन्होंने कहा कि ये पुलाव बच्चों के स्वाद के ज्यादा अनुकूल है। उपमुख्यमंत्री ने विभाग को इसे जल्द आंगनबाड़ियों में उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने नाश्ते में दिए जा रहे मुरमुरे के स्थान पर भी समान दरों में कोई अन्य बेहतर और पौष्टिक विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल एट

0: AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में करीब 5000 नए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए हरेक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके तहत कुल 125,60,00,000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन आवासों के लिए अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली CSMC बैठक में मिलेगी। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के तहत विभिन्न शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। जोधपुर नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके तहत राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कलाकृतियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, जिससे पुराने कचरा प्वाइंट अब आकर्षक सेल्फी प्वाइंट में बदल गए हैं। पाली नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए सिटीजन फीडबैक अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नागरिकों से QR कोड स्कैन कर फीडबैक देने और शहर को बेहतर रैंक दिलाने में सहयोग की अपील की है। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में भी उपलब्ध होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज जयपुर में आयोजित सारथी संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के बाद अब जयपुर में भी ये अनूठी सेवा शुरू होने जा रही है। ये आमजन को किफायती और सुरक्षित सफर का विकल्प देगी। श्री दत्त ने कहा कि इस सहकारी सेवा में कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं होगी, बल्कि टैक्सी चलाने वाले चालक यानी सारथी ही इसके वास्तविक मालिक होंगे। इससे चालकों को निजी कंपनियों की मनमानी और हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर मौजूद टैक्सी चालकों ने भी इस स्वदेशी सहकारी पहल की सराहना की। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय ने कोटा मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों को जंक्शन स्टेशन घोषित किया है। रेल प्रशासन की इस घोषणा के बाद अब गंगापुर सिटी, रामगंज मंडी और गुडला स्टेशनों को जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। नई रेल लाइनों और कॉर्ड तथा बाईपास के लाइन से शुरू होने से इन स्टेशनों का दर्जा बढ़ाया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन स्टेशनों के वर्तमान अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड पहले की तरह यथावत रहेंगे, केवल उनके नाम के आगे जंक्शन शब्द जोड़ा गया है। राज्य में अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर छाया के प्रबंध किए गए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों के साथ साथ पशु और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म दिन रहा। वहीं बीकानेर में सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहां पारा 31.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, फलौदी, बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। वहीं राजधानी जयपुर में तापमान 42.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। चूरू जिले के तालछापर अभयारण्य और उसके आसपास के करीब 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। ये ईएसजेड चाडवास, देवानी, रामपुर, सूरवास और छापर कस्बे में स्थित है। अभयारण्य में काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों के कुदरती रहवास को खनन और प्रदूषण से बचाने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार क्षेत्र में व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और भारी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। श्री सुराणा ने बताया कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के अंदर तक किसी नए होटल रिसोर्ट बनाने और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता और कुदरती वातावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। जिले में इन दिनों मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। जनगणना 2027 के तहत जिले के 21 क्षेत्रों में प्रगणक घर घर पहुंचकर मकानों से संबंधित जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जनगणना के दौरान प्रगणकों को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने भी नागरिकों से जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग देने और मांगी गई जानकारी सटीक तरीके से उपलब्ध कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है। जिन लोगों के पास खुद का आशियाना नहीं था, उन्हें इस योजना से काफी मदद मिली है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए विभिन्न किस्तों में 2.5 लाख रूपये तक की, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लक्ष्य 2028-2029 तक बढ़ाया गया है। जिले में सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इसके तहत नवजात से लेकर 10 साल तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोला जाता है। इसमें कम से कम 250 रूपये और अधिकतम 1.5 लाख रूपये सालाना तक का निवेश किया जा सकता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल या बेटी की शादी के समय मैच्योरिटी राशि ली जा सकती है। जिले में 853 से अधिक बालिकाओं के खाते पोस्ट ऑफिस में खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत जिले में 21 मई को आवेदन शिविर लगाया जाएगा। रतन नगर नगर पालिका सभागार में ये शिविर लगेगा। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पात्र आवेदकों को 3000 रूपये महीने का लाभ मिल सकता है। वित्त विभाग ने श्रमिकों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों और लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की थी। चूरू में पिछले दिनों प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर करीब 600 किलो

0: प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए गए। उन्होंने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और आम नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और पेपर बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया। चूरू में पिछले दिनों इनोवेटिव बूट कैंप आयोजित किया गया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में इस आयोजन में जिले भर के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का दक्षता कोर्स करवाया गया। भीषण गर्मी और लू की दौर से जिले भर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर पानी के परंपरागत स्रोत टाके, जोहड़ और तालाब सूखने से पानी की समस्या हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में 5,000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश री पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू भेला। और प्रदेश रा घनखर हल्का माए लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन रे शंका। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, सुप्रीम कोर्ट जनगणना 2027 रा तहत जातिगत गणना करावन रा केंद्र सरकार रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत री सदारत वाली पीठ कहो कि पिछाड़ी तबकारी जनता रा भला सारू जतन करण बाबत सरकार ने वारी तादाद री जानकारी भेवणो जरूरी है। पीठ कहो के ओ मुद्दो सरकार रो नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आवे है। ए विचे प्रदेश में जनगणना 2027 रा तहत मकाना री लिस्ट बनावन रो काम चाल रियो है। पाली जिला रा दूर दराज हल्का और ढाणिया में प्रगणक घर घर जार HLO ऐप रे जरिए जानकारी भेड़ी कर रिया है। ई डिजिटल सर्वे रा तहत हर मकान री असली लोकेशन दर्ज करी जा रही है और जनताओं 33 सवालों रा जवाब लिया जा रहा है। प्रशासन जनताओं प्रगणका ने सही और पूरी जानकारी मुहैया करावन री अरज कीनी है। देश रा न्यारा न्यारा हलका माए लाडला दिना रेलगाड़ियां माए लाई लागण रा वाकया माए असामाजिक तत्वों रा शामिल भेवन रीठा पड़ी है। आमाए राजस्थान री 2 घटनावां शामिल है। पालीरा अमरपुरा स्टेशन के नवी एक घटना माए एक अनजान जना रे एक डिब्बा माए कपड़ो बाड़बारी कोशिश करण रीठा पड़ी है, जि कारण वहां डिब्बा माए लाई लागी ही। कोटा माए राजधानी एक्सप्रेस माए लागी लाई रेल रा घुसलखाना स्वरूप हेवन री शंका है। रेलवे मुसाफिरा ने सावचेत रहता थका शंका लायक हरकत री जानकारी रेलवे रा हेल्पलाइन नंबर 139 माथे संपर्क करण री राय दीनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल रातेत आज बांसवाड़ा रा चुड़ादा गांव माए रात्रि चौपाल लगार गांव वाला सागे बातचीत कर रहा है। मारो काल समारे गांव रो पैदल दौरो कर लोगों बातचीत करण रो कार्यक्रम है। ध्यान जोग है कि ग्राम विकास चौपाल रे जरिए मुख्यमंत्री गांव वाला सागे सीधी बातचीत कर सरकार कानियो जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रो फायदो मिलन रे बारे माए जानकारी हासिल कर रहा है। वारो काल डूंगरपुर जिला रा 84 हल्का रा धम्बोला गांव माए ग्राम विकास चौपाल लगावन रो कार्यक्रम है। पेट्रोलियम कंपनियां रा मुजब प्रदेश माए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रो जरूरी स्टॉक मौजूद है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तेल कंपनियां रा नुमाइंदा सागे पेट्रोलियम उत्पादों और LPG री उपलब्धता रा बारा माए मीटिंग कीनी। कंपनियां रा राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता बतायो कि सरकारी तेल कंपनियां प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस

0: लगातार पूर्ति कर रही है। श्री गुप्ता जनताओं घबराहट माए गैर जरूरी ईंधन भेड़ो नी करण रियरज की। इन बीचे प्रदेश में राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो है कि दूजा देशों की तुलना में भारत में हालात बेहतर और काबू में है। वह जनताओं जरूरत रे मुजब तेल री खरीदी करण री अरज कीनी।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केन्द्र माए अब बच्चा ने उपमारी ठौर पौष्टिक न्यूट्री पुलाव खिलायो चावेला। उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी आज जयपुर माए नुआ न्यूट्री पुलाव रो नमूनो चाख्यो। वे कहो कि प्रदेश रा बच्चा सारू ओ पुलाव स्वाद रे मुजब है। उप मुख्यमंत्री इन बेगोई आंगनबाड़िया माए बच्चा ने दिया जावन वाला भोजन माए शामिल करण बाबत कहो। दिया कुमारी बच्चा ने नाश्ता माई मुरमुरा रिठौड़ी समान दर वाला दूजा बेहतर और पौष्टिक आहार रो विकल्प तैयार करन रा हुकम दीना। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य माए करीब 5,000 नुआ मकान बनाया चावेला। इन रतेत हर पात्र जना ने खुद रो पक्को मकान बनावन सारू केंद्र सरकार री ओर 1.5 लाख और राज्य सरकार री ओर 1 लाख रूपया री सब्सिडी दी जावे है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सारू बनाई जी राज्य स्तर री सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी री मीटिंग माए अहलकारा जानकारी लीनी। ये योजना रा तहत 125,60,00,000 रूपया री सब्सिडी दी जावेला। प्रदेश माए स्वच्छ सर्वेक्षण रा तहत न्यारी न्यारी ठोड़ा साफ सफाई रा खास अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर माए नगर निगम री ओर खास गेला और जनता रे आवन जावन री ठोड़ा भीता माथे राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण ने बचावन रा संदेश जुड़ी चित्रकारी करी जा रही है। पाली माई शहर ने रूपाड़ो बनावन सारू नगर निगम री ओर सिटीजन फीडबैक अभियान चलायो जा रियो है। निगम रा कमिश्नर नवीन भारद्वाज जनताओं QR कोड स्कैन कर फीडबैक देवन री अपील कीनी है। जयपुर माए सहकारी मॉडल माथे आधारित भारत टैक्सी सेवा री शुरुआत आवता महीना रा पहला सप्ताह माए करण रो प्रस्ताव है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक आज जयपुर रा अपेक्स बैंक माए राखी जिया सारथी संवाद कार्यक्रम माए आ जानकारी दीनी। दिल्ली मुंबई और लखनऊ पाछे अब जयपुर माई जनता ने किफायती और सुरक्षित सफर रो सुबितो मुहैया करावन सारू आ सेवा शुरू करी जावेला। श्री दक कहो के ई सेवा माए कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं भेला जिन्हो ड्राइवरा ने गैर सरकारी कंपनियां री मनमानी छुट्टी मिलेला। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल रा गंगापुर सिटी रामगंज मंडी और गुड़ला टेसना रे जंक्शन भेवन रो ऐलान कीनो है। रेलवे रा अहलकारा ने मुजब अब 8 टेसना रा नाम सागे जंक्शन जोड़ियो चावेला। इन सारू जरूरी बदलाव रा हुकम जारी कर दिया गया है। अरब मौसम प्रदेश माए पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीचे घनखट होना दिन री बगत पारो 42-46 डिग्री सेल्सियस बीचे जदके रात री बगत 26-31 डिग्री सेल्सियस बीचे दर्ज करियो जा रियो है। जनता सागे जिनावरा और परिंदा नई गर्मियों बचावन सारू न्यारी न्यारी ठोड़ा पीवन रा पानी री व्यवस्था करी ची है। मौसम विभाग आवता दिना कई ठोड़ा लू बाजन सारू चेतायो है। इविचे लाडला 24 घंटा माए श्री गंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे राज्य माए सबू गर्म ठोड़ रहो। बीकानेर माए रात्रि बगत सबू बत्तो 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करीचियो। अलवर कोटा चित्तौड़गढ़ फलौदी बीकानेर और चूरू

0: आए मत्थो बत्तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों। राजधानी जयपुर में आई 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी चियो। ई बीच गर्मियों बचाव सारू प्रशासन री ओर न्यारी न्यारी ठोड़ा छाया रा प्रबंध करी चिया है और सड़क माथे पानी रो छिड़काव करियो चाहियो है। और ब्यूरो माणा खबर नवीसू।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल में लू रा मरीजों का इलाज जुड़िया सगला जरूरी इंतजाम करने का हुक्म दीना है। भरतपुर जिला में सेवर रा सरसों अनुसंधान संस्थान री ओर मेरा गांव मेरा गौरव अभियान रा तहत रणधीरपुर गांव में किसान संगोष्ठी राखी ची। इनमें कृषि वैज्ञानिक किसाना ने खेतीबाड़ी रा बेहतर तरीका, प्राकृतिक खेती और मिट्टी रो स्वास्थ्य बेहतर बनावन रे बारा में जानकारी दीनी। खेतीबाड़ी रा जानकार किसाना ने मिट्टी री ताकत बचार राखन सारू जैविक खाद, गोबर री खाद और ढेंचा सरीखी हरी खाद काम लेवन बाबत कहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता सारू प्रविष्टियां जमा करावन री आखिरी तारीख 31 मई ताई बधा दीनी है। आहोड़ फिल्मा बनावन वाला रचनाकारा और जनता ने समकालीन प्रारूपां रे जरिए वंदे मातरम री भावना ने नुआ सिराऊं पेश करन री प्रेरणा देवे है। होड़ रील्स एआई आधारित फिल्मा और नानी फिल्मा री श्रेणिया माए फैला। हनुमानगढ़ जिला में तलवाड़ा कने भूरानपुरा गांव में स्वास्थ्य विभाग नकली दूध बनावन रो कारखानो पकड़ियो है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा बतायो कि मौकाओं मोटी तादाद में नकली दूध और अमानक सामग्री नष्ट कराई ची। आखिर में खास समाचार एक कर फेरु सुन ली राओ। सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रा तहत राज्य में 5000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू फैला। और प्रदेश का घनखर हल्का में लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार,
2: ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुने कार्यक्रम चौपाल।

0: हलचल है।
1: हलचल बहुत बढ़िया है साहब, इन बार तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है गुरविंदर भाई।
0: तो बढ़िया की करूंगी हालचाल है, है गर्मी पड़े तो भाई देखो तावड़े में बारे नहीं निकली जे, और एड़े में अगर कोई तावड़े में बारे निकले कन्ने मान लो पानी नहीं है या भूखे पेट निकल गयो तो बोलूरी चपेट में आ जा। क्यों मतलब है कि तावड़ो तो भाई तावड़ो ही है, तावड़े माते तो मारवाड़ में भी कई तरह का गीत बनी उड़ा है।

0: बहुत अच्छा तरीका हूँ समझता। वे नौतपा मायने पहले दिन गर्मी पड़े तो विनु कई असर विया करे, नोरा नौ दिन गर्मी तेज रहे विनु कई असर विया करे। इन मायने वे पहले रा लोगारी बहुत सारी एक सका के एक गणित निकाली ओड़ी ही गुरुंद्र भाई जिन्हों वे अनुमान लगाए देवता के आगे केड़ा दिन आउन वाला है, खेती बाड़ी वास्ते केड़ा वेवना है, मौसम वास्ते केड़ा वेवना है, बारिश केड़ी वेला। और गुरुंद्र भाई आपा बात करा खेती बाड़ी रीन तो आपा देखा कि खेती बाड़ी मायने एक छोटो सो जीव है जो आप बहुत बड़ो योगदान राख्या करे। जकान आपा कहवा मधुमक्खी, संयुक्त राष्ट्र री एक रिपोर्ट रे अनुसार आपा देखा तो दुनिया री जो को 35% कृषि है वह परागण माते निर्भर है। परागण मायने मधुमक्खी आएगी, तितली आएगी, चमगादड़ आएगा, चिड़िया आएगा, एड़ा वे छोटा छोटा पक्षी है, छोटा छोटा जीव है, ये भी अपने खेती बाड़ी मायने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करिया करे।
1: बिल्कुल, देखो के जैव विविधता रे विकास रे मायने अगर की यारी सबो ज्यादा भागीदारी मानी जावे तो कीट पतंगारी मानी जावे। कीट पतंगारा जो अध्ययन मुजब अगर आप देखा तो जका विकसित देश है, खास तौर माते ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, यूरोप है, आ देशा रे मायने कीट पतंगा रे अध्ययन वास्ते इतो मोटो मतलब प्रोजेक्ट वे इतना बड़ा बड़ा वे काम करे के वे दक्षिण अफ्रीका जका जट डाइवर्सिटी ज्यादा है उठे वे पूरा टाबरा रा कैंप लगावे, पूरी कॉलेज री कॉलेज रा कैंप लगावे, पचे बा कीट पतंगा ने एक कहीं के पर्दो लगान पकड़े, पचे वे नो डिसेक्शन के भाई वे ने किन प्रजातियों की ओ कीट पतंगो निकली है। तो आज को वे रो इवोल्यूशन अध्ययन है वो बड़ो ही महत्वपूर्ण है। और ए जितना भी छोटा जीव है, कीट पतंगा और छोटी चिड़िया, ए कीनी पौधे माते बैठे तो वे रा पराकन ले जान दूजे पौधे माते छोड़े। तो भाई लोग एक तरह ए संदेश वाहक है विकास रहा, ए संदेश वाहक है विकसित होती प्रकृति रहा।
0: अगर मधुमक्खियों परागण बढ़िया वियोड़ो है तो फसल उत्पादन मायने भी वृद्धि वे, फसल उत्पादन बढ़िया विया करे। और आज आप बात करिया हम मधुमक्खी री आने परागण कारी तो इन लारे भी एक खास वजह है, और वह वजह है कि आज रो जो दिन है वो दिन विशेष रे रूप मायने है विश्व मधुमक्खी दिवस रे रूप मायने। आज रे दिन रो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि आपा अपने पारिस्थितिकी तंत्र मायने आने मधुमक्खिया रो कई रोल है इन चीज ने समझा, आने परागण का रो कई रोल है इन चीज ने आपा समझा, अपनी खाद्य श्रृंखला मायने एक योगदान देवे आपा इन चीज ने समझा,

0: गीत संगीत रे माइने जो राजस्थानी लोक संगीत है उ में तावड़े री अलग तरह री महिमा है। तावड़े रे पछे अनिल भाई वो जो को कहीं कह नी सांझ ढले
1: हाँ
0: गोधुलरी बेलान पछे बा मरुधर धरा पड़े ठंडी रात रो जो को मौसम रात रो जो को है आनंद वो अलग हो जावे
1: कहवे भी है। अब आगे 25 तारीख को नौ तपो भी शुरू है गुरविंद्र भाई, तो नौ तपा मायने चेतावनी भी जारी करियोड़ी है सरकार की तरफ प्रशासन की तरफ कि भाई तावड़ा रा अगर कोई जरूरी काम वे तो अपने बारे निकलनो, अगर जरूरी काम नहीं वे तो अपने कोशिश आ राखनी कि दोपहर टाइम में बारे नहीं निकलनो, और बारे अपने निकलनो जरूरी वे तो शरीर ने हाइड्रेट राखनो, और अगर लू रहा या कोई लक्षण दिखे अपने तो हाथों हाथ चिकित्सीय परामर्श अपने लेवनो।
0: बिल्कुल नौ तपा यानी नौ दिन तपत्रा
1: बिल्कुल सर।
0: और आपने जो कि गांव रा लोग है बे इन तावड़े री इन तपरी उड़ीक राके क्यों बे देखे कि जितो बढ़िया तप होई जेड़ो तावड़ो जेड़ो बायरो बेड़ो मौसम बरसात रो
1: आपा तो अबे आज रे टाइम माई नहीं था समझा नहीं गुरविंद्र भाई, लेकिन भडेरा इन चीज माई

देखो कि अगर पूरी दुनिया में मधुमक्खी मुजब कोई दिन विशेष मनाई जे उरी महत्वपूर्णता उरो महत्व रो भी ठा पड़े। अब जो आप जीव जंतुआ रे मायने देखा कि भाई नर और मादा वे ठीक उन्हीं तरह कई एडी जकी पौध श्रृंखलावा है जी रे मायने अलग अलग तरह रा पौधा वे और वहां पौधा रे मायने जो फल है वो सिर्फ और सिर्फ पराग कण रे संवाह कुंज लागे। पराग कण एक जगह दूजी जगह हवा रे माध्यम ही जा सके।

0: लेकिन अगर सटीकता उए में देखे तो मधुमक्खी एक फूल चूसे उए माते बैठे उए रस चूस न आगे वाले फूल मत जावे जना वे पराग रखन उठे छूट जा। मधुमक्खी जड़ो मतलब श्रम जीवी जीव अपनी इन धरा माते नहीं है। देखो के एक बूंद जो को भाई कहीं के शहद बनाने वास्ते लाखों फूला रो वो जानो पड़े उन्हें और किन प्रकृति वो छत्तो बनावे छतेरे महीने बे छेद करे ईंडा देवे वन वास्ते वो शहद इकट्ठो करे। तो भाई अगर उन कुदरत ने देखा तो ये में एक सामाजिक तारी भावना है कि रानी जकी है वह छत्ते में रह जकी श्रमिक मक्खियां है नी ए उड़ उड़न वो जो को जूस है रस है वो इकट्ठो कर वे रो शहद बनावे।
1: बिल्कुल साहब, जो अबार आप बताया गुरविंदर भाई, मधुमक्खिया मायने एक छत्ता मायने बात बात री मक्खिया रिया करे जो सब इम्पोर्टेंट मक्खी विया करे जकने दूसरी मधुमक्खिया रक्षा भी करिया करे वह मधुमक्खी विया करे रानी मधुमक्खी। विने अलावा श्रमिक मधुमक्खिया भी वे और सैनिक मधुमक्खिया भी विया करे। सैनिक मधुमक्खिया रो रोल ओ वे के जिन टाइम वाने लागे कि भाई रानी मधुमक्खी माते कोई खतरो है या मधुमक्खी रे छत्ता रे आसपास कोई खतरा रो अंदेशो वाने लागे तो वे विन टाइम एक्टिव वेन हमलो करन वे कोशिश करे आपरे छज्जा ने बचावनारी और आपरे रानी मधुमक्खी ने बचावनारी। और जो श्रमिक मधुमक्खिया है वाणो ओ रोल फिक्स है कि वे जावेला एक फूल रस चूसेला विनो वो रस भेड़ो करन लावेला विनो शहद बनावेला।
0: देखो के किसान भाई जका है बे मधुमक्खी पालन रो व्यवसाय भी करे और खास तौर माते जटे आए पाए कणी राज्य में घना जंगल है, कश्मीर है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, उठे जको खेती बाड़ी रे साथे साथे मधुमक्खी पालन जको है एक व्यवसाय मुजब है। कई जकी शहद री बड़ी कंपनियां है बे अच्छा फार्म हाउस डेवलप करे वहाँ फार्म में अच्छी अच्छी तरह रा फूल पौधा लगावे और उठे वो मधुमक्खी पालन करे। वो जो शहद है तो वो एक तरह अमृत है। मैं कटे कोई एक आर्टिकल में पढ़ी हूँ कि शहद री उम्र है वो हजारों साल वे शायद हजारों साल बाद भी खराब नहीं हुए। ऐज की मिस्र महीने भाई जो की ममीज मिले है के भाई 3500 साल पहला पिरामिड जो को है उरी खुदाई में एक ममी मिली मतलब आदमी रिजमत एडो अवलोकन कर दे वो वेड़ो वेड़ो रहे उरा जो को विकृति है शरीर महीने वानी आवे तो उरे साथे साथे जो को शायद रो भी वो बताया कि शायद भी मिली और उन शायद री टेस्टिंग करी नहीं तो बिल्कुल वो आज री तारीख में भी उपयोगी हो। मतलब है कि 2000-3000 साल बाद भी अगर शहद खराब नहीं हो तो ईरी उपयोगिता तो आपने खुद नहीं समझनी चाहिए। अरे हमें घर परिवार में आपा देखा कि भाई आए पाए दरखत गना हो गया, दरखता माते ही छाता हो गया तो कई लोग जगह है वहां मक्खिया ने धुओं कर बगा देन तो शहद रो भी उत्पादन नहीं लेन के नहीं, नहीं है तो खा जाए। देखो के भाई वो एक तरह प्रकृति रो बहुत ही उपयोगी जीव है। उन जीव रो अगर खात्मा हुई धरा माते तो अन्न उत्पादन में भी नुकसान होवेला, फसल उत्पादन में भी नुकसान होवेला। कोशिश आ करो कि भाई आए पाए कठी मधुमक्खी रो छातो है तो उरी सार संभाल करो। और जो भी आजकल कहीं कहे कि भाई गाबा मिले जालीदार टोपी न आतरा बे ग्लाउज व्लाउज वे लान आप रो वो जो को शहद है वो निकाल भी सको तो क्यों ना। मतलब है कि एक बहुत ही कीमती जको अमृत इन धरारे महीने छोटी छोटी मक्खियां बनावे पूरी दुनिया में इन शहद री मांगे।
1: बिल्कुल सा, अपन आयुर्वेद मायने भी शहद रे बारे में बताई ओड़ो है कि एक दवाई रे रूप मायने भी आप शहद रो उपयोग कर सको। आप देखा गुरविंदर भाई बहुत बार खांसी वेजावे तो खांसी मायने भी लोग शहद रो उपयोग करिया करे। क्यों रो मतलब ओ है कुल मिलान के मधुमक्खी और मधुमक्खी रे द्वारा जो उत्पादित चीज है वे अपने प्रकृति मायने बहुत काम री चीज है। अब अपने प्रयास ये करना है कि अपावाणो की तो ज्यादा संरक्षण कर सका। अपने आसपास अगर मधुमक्खिया वगैरह नहीं है और खाली जगह है तो अपने कोशिश आ करनी कि अपा ऐड़ा पौधा लगावा कि जटे मधुमक्खिया पनप सके, मधुमक्खिया रे अनुकूल माहौल आपा बनाए दा और मधुमक्खिया ने अपा विलुप्त वेवतोड़ी प्रजातियों बचाई सका। अगर आज अपा ये प्रयास नहीं करिया तो आउन वाला टाइम मायने लोग होने ला कि मधुमक्खी जड़ो भी एक जीव हो जो छत्तो बनावतो और विनु शहद प्राप्त वेवता।
2: खायो मोरी मैया,
3: ओरी मैया सुन।

0: देखो कि हर जीवरी सार हर जीवरी संभाल करनी जरूरी है। मनुख जो को जीव है वो विकास और विज्ञान और टेक्नोलॉजी आड़ रे महीने और दुनिया रे महीने आप वो कहें सर्वे सर्वा बढ़न वास्ते कई अड़ी प्रजातियां वो ने लुप्त कर गयो। तो कठे ही भाई लोग आने वाले दिन में आ चीज नहीं हुआ कि आप अपने टावरा ने या आने वाली पीढ़ी ने मधुमक्खी री फोटो बतान उगे छत्ते री फोटो बतावा। आज भी टाइम है जिन मुजब किसान लोग अगर कोई मधुमक्खी पालन करना चाहे तो इन मुजब भी कृषि विज्ञान केंद्र माते बहुत सारी जानकारी है कि भाई आपकी करण कट है मधुमक्खी रो जो को पालन कर सको। और ये मैंने कहा लकड़ी रा छोटा छोटा डब्बा बनावे उन डब्बा बनावे जो की मादा मक्खी है नी जो की अंडा दे वे रो एसेंस भी मिले। कई जगह ऐडा है कि उन एसेंस रो एडो उपयोग करे कि भाई आप हाथा माते लगान एक छत्ते ने दूजी जगह फोर भी लेवे।
1: हाँ।
0: तो क्यों मतलब है कि वो एक सामाजिक जीव है इरे डंक को नहीं डरनो और डंक तो आप रे बचाव रे वास्ते करे। और अभी एक भी दूजा जगह

0: का कोई मोटो टाटियो बीजो उगाने जो कि मक्खियां है बारा इंडा नहीं खा जाए उरे बचाव वास्ते है कह रहा मैं अनिल भाई देखो अताई होगी घनी
1: बिल्कुल सर,
0: और कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरविंदर विश्नोई
1: और अनिल चरण ने सीख दिरो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर।

इस भीषण गर्मी में ये एहसास होता है कि एक एक पेड़ कितना खास होता है। पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकारी नहीं, इसमें जरूरी है जन जन की भागीदारी। जल की एक एक बूंद को व्यर्थ बहने से बचाएंगे तो कई प्राणियों को प्यासा रहने से बचा पाएंगे हम।

पेड़ों से गुजरकर गर्म हवाएं भी शीतल हो जाएगी। पेड़ लगाएं, बिना हरियाली ये धरती बंजर हो जाएगी।

ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7:30 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम सीमा डेरी गुंज का। आइए सुनते हैं।

0: ¡Ay, no lo va! ¡Oh, no lo va!
1: राम ओलाली रे भाई आवरी मैं कुन राखी
0: हां राम राम
1: हां राम राम भाई
0: पग लागड़ा
1: हां लागू भाई पगा हो तो कहूं करूं हैं तू जो तो कह नहीं कि खेतों में नीचे ही लुड़ो कोनी।

0: मुंडे मुंडे बोलो पकड़
1: ले ओ आ झुकी लो
0: वाह भाई
1: लो झुकिया।
0: अरे जीवती रहन थारी हजारी उम्र रहन है जो थारे हाथ क्या नहीं कर जिंदगी में आवता रहे कहूँ भाई तावड़ियों घड़ो पड़े है न मैं कोई कम हो ही को है नहीं कोई मैं पड़ी कद आई है राखी
1: क्या मालूम को भविष्यवाणी करो नोलो बात है
0: हूँ बड़का ही भविष्यवाणी करूँ हूँ
1: बिजली बार बार जावे पानी की कमी आ रही है जरा पूर्ति हो नहीं रही है।
0: अरे बे हमें हंग की कोनी होते ही रहे करता हाँ। नहीं तो कहूँ भाई देखे कर एक क्या नहीं राज नहीं राज क्या कुदरत मोटो है राज क्या नहीं सरकार भी मोटो है
1: बिल्कुल ऐसा
0: हाँ मैं कर क्या नहीं कि भाई देखो घड़िए में तो क्या कुदरत तो की कर दे हम 3 महीना पहला दे क्या कहूँ हाल ही ठाडे भाई है जो क्या नहीं कि अपना मुकाबलो करता हमें भाई अड़ो तपन होगी कि बस वो क्या क्यों नहीं काम को नहीं है तो तावड़ियों घणो पड़े भाई थोड़ो कही है कि हमें क्या टाइम दे के नाल बोकरो है
1: कसू निकले पण बार में तो
0: हाँ नहीं नहीं निकलना भाई हाँ कह नहीं देखे को क्या भैया ऋतु नहीं तावड़ो ही है जो कह नहीं मिनक रो दुश्मन है
1: सही है
0: ही है वो ही है मिनक रो दुश्मन है बरसात है तो ये मैं तो कुदरत रा कह नहीं खेला है यूं ही चलता रहे जीते जी और जीते तो मुकाबला करना पड़ी पर बडेरा तरीको बता दिया है
1: बिल्कुल बताया सर
0: देखो भाई वो कहीं है का पर काम रो है
1: ठंडी चीज
0: पानी
1: खा
0: पी
1: वो करो
0: हाँ ठंडी चीजा जीमो मैं तो कहूँ भड़की नहीं है तो भाई अपारे बिलोने वाली छा है दही है ठीक है नहीं दूध
1: ठंडो दूध लाई हूँ आज
0: हाँ लिया की कोनी मैं तो कहूँ कुल भी आन दूजी बे खाओ मतीरिया खाओ ठाडा कह नहीं की ठिकंदिया पियो
1: बिल्कुल
0: हैंग बात करो तो ठीक है ना आज वो कहूँ गीतड़ो है जिसको गहू ढूकी पर एक बात है क्या जीव जिनावर रह पंख पंखे रू बाबती होश तारो
1: बिल्कुल
0: क्या लोटो पानी है जो कोई कुंडी में घाल दियो क्या कोई खेली खेली कुंडी भर दी
1: हाँ।
0: तो बही है जो जीवड़ा कह नहीं आप लोग कह तिर मेट दे नहीं तो हम चीड़ी दे के भाई हाँ कह के मुठी एक तो चीड़ी है धोबो वीडियो कबूतर है घणो घणो दे के तो बस को वीडियो कागलियो है जाई गटे तो है तो आप भरोसे ही
1: पशु पक्षियों रे ध्यान रखना पड़े गाय भैंस उधर पशु है नहीं पर है
0: हाँ
1: और स्वास्थ्य रो भी देखभाल करनी पड़े
0: अरे बो राखो पड़े टाबल टूबल बूटा ठाडा हैंगर ध्यान राख बोकरो तो कह दी हैंग बात है नो मुकड़ो गीत लो कह है जो गायो के
1: हाँ मधुबन खुशबू देता है
0: मधुबन की ने कह भाई
1: मधुबन यानी बगीचो बगीचे में
0: बगीचे में खुशबू आवे
1: हाँ बगीचे में फूलों रे खुशबू आवे नहीं
0: हाँ बात हाँसी भाई देखे कह उठे तो कई भौरा कह नहीं कह मंडरावे कई है जो कह नहीं टाटिया फिरे कई है जो कह नहीं कि भाई
1: मधुमक्खी
0: मधुमक्खी है भाई घड़ी फिरे
1: मधुमक्खी रे छत्ता घने देखे मैं बार
0: हाँ घड़ी है भाई देखे जेठ में चैत में तो कह नहीं क्या छाता लागी है शहद बनावी है पर क्या नहीं माखी कुछ दो बनी एक बैठे गंदगी माते
1: अरे
0: एक बैठे फूला माते है कोनी एक देवे है एक देवे है जिसको कह नहीं बीमारी
1: बीमारी देवे
0: तो यूं यूं भाई देखे एक मिन का गुणा लारे बाता है
1: ये बात सु याद है आज विश्व मधुमक्खी दिवस है आज
0: यूं
1: हाँ
0: मधुमक्खी दिन है
1: हाँ आज 20 महीने दुनिया भर में मनाया जावे और अपर पर्यावरण और परिस्थिति करण तो वेन तंत्र और कृषि रे स्वास्थ्य रख रखाव खातर दिन ने मान्यता दी गई है।
0: हाँ जी बात है भाई देखे आके संसार में कह के परोपकार वो काम करे पर कोई छेड़ दी वे
1: तो डंक
0: तो
1: मार दे
0: है जिको बकै नहीं उन्हों काम हावड़ी करे
1: मुंडो सुझा
0: तो ठीक है नहीं बात है पर भाई देखे गुणा लारे पूजा है और कह नहीं के बढ़िया कह ठोड़ ठोड़ू बे कह के वो फूलर रस बेड़ो कर और मिनक जात ने देवे तो वो औकत रूप में काम आवे
1: फल फ्रूट और बनावन में और बना पर काम आवे
0: भाई जगह
1: सब्जियों पैदा करण में
0: और थार गीत लोग है जो गायड़ो है नी ओ मन बहुत एकदम
1: मीठो
0: हाँ मीठो लागो भाई हुना
1: दही सेहत दही है नी
0: हाँ एकदम है तो वेजू लागो तो हुना भाई
1: सुनो सा।

0: वाह भाई ये वाह की कोनी बढ़िया गीत लो सुना दियो और मैं विगत बार है जी को मैंने जानकारी दो कि भाई कौन जन्मिया कौन भूत होया और बे समाज देश वास्ते दुनिया रे वास्ते कहीं करन गया।
1: बिल्कुल विगत बार बताओ सब बार थाने मन गीत कविता शौक है नी तो आज कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कवि है बोरो जन्म दिवस है जन्म जयंती
0: आज मोटा होया भाई
1: हिंदी साहित्य में लिखता सुमित्रा पंत जी व्यक्तित्व एक करती तो हिंदी साहित्य में छायावादी युग रहे चार कवि।
0: अरे भाई हाय है भाई देखे माँ भी क्यों कह भाई जय शंकर प्रसाद माँ देवी वर्मा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी
1: रामकुमार
0: वर्मा भाई मैं कह वो तो एक वो कह जुग हो और जुग में मोटा मोटा जन्मिया
1: छायावादी कविता लिखता है
0: विद्वान हाँ भाई गुणी विद्वान हाँ तो सौ की पोतियां लिखन किया तो आज
1: बताऊ झरना पुष्ट बर्फ लता भ्रमर गुंजन उषा किरण शीतल पवन आदि
0: अरे कुदरत मात्र लिखियो भाई है कुदरत मात्र लिखन किया तो सो की रचना है तो आज ही मिनक पड़े तो जीव हो रही वह
1: पद्म भूषण से सम्मानित भी है।
0: हाँ तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदिर लेना फूल चढ़ावा भरे
1: भरे आज अपर पीरू सिंह जी भारतीय सैनिक व्यक्ति है बोर जन्म आज
0: ओ पीरू सिंह जी हो या भाई मैं तो कह नहीं की भाई परम वीर चक्र मिलियो
1: वीर चक्र
0: कंपनी हवलदार है
1: कंपनी हवलदार भारत पाक युद्ध में भी फोत हुए नी बे तो बन मरनो पर परम वीर चक्र सु सम्मानित करियो।
0: अरे भाई मैं तो कह नहीं की बारो नाम सिरे है और भारतीय फौज में कह नहीं की भाई बने हमेशा याद रखे और याद रहला और मैं देखे भाई के कबालियों है जो झगड़ो हुई नी जग में शहीद हुआ वीर गति प्राप्त करी तो एडा कह नहीं की भाई देखो देश रे वास्ते आप प्राण नछावर करने वाला वीर सैनिका ने कोई नहीं भूल।

0: कोई नहीं
1: देश,
0: भूल सके
1: देश हनी और वो क्या नहीं के भाई देखो माँ जन्म देवती टैमरा जीती क्या नहीं हर क्या नहीं क्या जीती सपूत देश से वास्ते जद क्या नहीं कि भाई आप प्राण देवे नो सावर करे तो बने बो है जो क्या नहीं कि भाई बाग ये क्या खुशी मिले खैर की कौन देखे भाई फौज फौजी है और फौजरी बात ही मोटी है
0: साथ साथ महिलाओं भी किसी कम नहीं है।
1: हाँ तो भाई एक में ढब ढब है मैंने कोई पीरू सिंह जी यारो कोई बढ़िया कह नहीं कि भाई देखे
0: गीत सेनर गीत
1: कोई, हाँ कोई फौजी गीत सुना
0: सुनो सा

0: गराटी में हो, गराटी
1: मराठी मराठी
0: हाँ
1: इकड़े बस
0: हाँ था नहीं भाई बोल गए कहो था तू इकड़े बस बिगड़े बस
1: इधर आओ
0: हाँ ठीक ठीक हो मैं आऊँ
1: काय जाला
0: बोली जाए कटा कटुम कटुम गई
1: क्या हुआ
0: हाँ ठीक ठीक हमें भाई होगा की को या नहीं हमें थे धके बदो बड़े बताओ तो पीरू सिंह जी ने तो मंदिर का फूल चढ़ा दू पर धोक देवान मंदिर का फूल चढ़ाओ कोटी कोटी नमन करा
1: बिल्कुल करो बड़े बड़े आधा पर अंजुम चोपड़ा जी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महिला बे टीम ने सदस्य और भारतीय से महिला टीम ने पूर्व कप्तान रियोड़ा और गेंदबाजी दया
0: खेल रहे तो भाई बढ़िया इनके
1: अर्जुन पुरस्कार 2006 में
0: अरे लुगाई टीम क्या नहीं हमें मजबूत होगी
1: कैसे कम थोड़ी है
0: हाँ कम कौन भाई था तो क्या नहीं कि भगवान ने हाथ पर पत्र जोड़ा मेरे था हाथ जोड़ा भाई ठीक है तो आनी है जो कोटि कोटि बधाई है
1: पता ही है
0: भगवान आने हाथ
1: विश्व कप भी जीतोड़े महिला
0: हाँ जीत गया भाई हमारे थोड़े दिन पहले जीत गया तो आनी है जो क्या नहीं कहा हजरत हजरा के चौकी बताओ बड़े
1: बड़ा मैं फो थोड़ा बताऊं
0: हाँ बता दो फटाफट बता
1: आज फो थोड़ा लीला दुबे जी मनोविज्ञानी वे दिल्ली में 20 मई 2012 में फो तो या और वे प्रसिद्ध मनोविज्ञानी और नारीवादी विद्वान

0: पड़ा मानव विज्ञान समाज शास्त्र चरण दुबे जीरे वे घर सुए और वे गुटक करे छाया छोटी बहन और
1: बेटे हाँ भाई मान लिया
0: साहित्यकार
1: अरे विदुषी महिला ही भाई और मंदरी बात है जी लुगी जात घनी जाने है पर तो यह समाज री बात है मिलका नहीं जानता
0: हाँ
1: कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है और मंदरेरा भूल चढ़ाऊ बड़े
0: और आज एक साहित्यकार फोत होया पर गया प्रसाद शुक्ल जी
1: हाँ
0: वे स्नेही नाम सु जाने जावे और हिंदी को साहित्य आधुनिक युग काल रे द्विवेदी युग इन साहित्य
1: हाँ भाई गुड़ी विद्वान है भाई और सब की रचना वा रचन किया तो बाकी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदरेरा भूल चढ़ाऊ बड़े
0: बड़े टी प्रकाशन कुंगुटूरी प्रकाशन राज मर्मज्ञ और आंध्र प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री भी
1: ओ ठीक ठीक है जो कह रही की तुम मोटे ओदे मत पूगा आन कह रही राजगाज हमारी और हैंग बातां भली करी तो भाई यानी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदरेरा फूल चलावा बड़े
0: बड़े आज दिन फो थोड़ा बीपी चंद्रपाल जी वे भारतीय नेता 20 मई 1932 कोलकाता में फो तो ये भी स्वतंत्रता सेनानी
1: अरे हाँ भाई कह लाल पाल बाल कह रही जोड़ी ही और आके भारत में है जो अंग्रेज आऊं घबरा होता हम दिया नहीं क्या कोई दिखना देहा कोई उतरा देहा कोई कटी हा बने है जो को कह नहीं कि अंग्रेज ने क्या छक्का छुड़ाया
0: बिल्कुल छुड़ाया
1: देश ने आजाद करायो और अत्याचार है जो को जुल्म सहन करिया
0: बिल्कुल
1: और आज होने रो हुर जुगान में गया हा तो भाई अड़ा मिनका ने कोई नहीं भूल सके पर बाते पौरा ने धोक देवा मन मेरा भूल छावन कोटि कोटि नमन करा
0: आज दिन फोत उड़ा मल्हार राव होलकर जी 20 मई 1766 आलमपुर फोत है मराठा साम्राज्य रा सामंत रेवड़ा
1: हाँ ठीक ठीक है
0: मारवाड़ा सूबेदार
1: अरे शिवाजी रे कलुम्बे में हाय भाई
0: हाँ
1: बेजु को कह नहीं कि मैं अपन देश री तो राजकाज री कह नहीं कई बात मोटी है कई है जो कह नहीं के बादशाह बढ़िया कई राजा बढ़िया कई महाराजा बढ़िया और कई रा कई है जो बढ़िया बे है जो कह नहीं आप राजकाज कर गया तो आनी है जो कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदरेरा फूल चढ़ावा और भाई हमें राखी मने कोई अर्जिश ही होना दे
0: अर्जिश तो सुनना जरूरी है
1: हाँ बिने बिने मारे कह नहीं हूँ भाई देखे बेड़ू बिने रह सकूं पर अर्जिश बिने नहीं रह जे मारूं ठीक है
0: जरूर सुनो सा
1: ठीक होना भाई
2: अरे

0: ये निहाल कर दिया मैं बस क्या
1: दिया आज है गर्मी घनी तो ठंडो दूध पीसवा
0: अरे दूध
1: चाय कौन पिया
0: अरे दूध रो देखे तासीर गर्म है थारो कोई मगज काम
1: नहीं ठंडो जण बना सा कच्चो दूध रो
0: अरे बना दे वाह बना सर मर्जी वाली कर दो हूं तो दे कि भाई कौन है अपर कौन है भाई सड़कों के खींचो बना लेती क्या कोई राबड़ी बना लेती तो राबड़ी कह साड़ी रे भाई रात्रि राबड़ी रो क्या नहीं हेड को ले ले
1: अच्छा
0: तो मैं एक आदो होगरो चूर ले तो थोड़ो कह ठीक रही
1: थोड़ी इच्छा पूरी थोड़ी इच्छा सुख बस
0: मारी इच्छा बड़का ही रसोड़ो कर दो त्यार हाँ बड़ा कोई क्या नहीं के घोड़ो दौड़े घोड़ी दौड़े हमें देखे क्या साठ रात दिन है आंधी मेरा कोई भरोसा नहीं है फटोफट आप बना लो रसोड़ो और भाई देखे के हूँ कहू जिकी बात थोड़ी गांठ बांध राज जो तावड़े में जय जो मत कटी मती भूंती देख कटी भूंती फिरती देख ली तो राखी मारू मुंडो
1: ना ना तो घर नहीं जाऊं
0: भाई
2: अरे भैंस खुल गई भैंस
0: अरे भैंस खुल गई बांध दे रामेश्वर बांध दे रे
2: आओ भैंस खुल गई है
0: अरे तो बांध दे कन क्यों है कड़े करे हमें भेड़ू टाइम हुई नो कटवाया हमें हा?
1: आया नो आया देखा ना आया क्या पापा भैंस खुल गई जो बताओ ना आया थाने
0: बताओ ना आया है तो कही है
1: कि बांध दो
0: अरे भूंता फिर बांध दे क्यों कौन भाई है थे रसो तैयार कर दो और वो हमार गर्म बढ़ गो तो भले क्या नहीं के यही नो की ठा नहीं है और हम भाई यूं है हूँ फिर लू मारा
1: हाँ तो रमेश सर जी नहीं कहते ना मन छोड़ दिया घरे
0: अरे हमें छोड़ दिया
1: गाड़ी माथे
0: अरे हाँ की को छोड़ दीजिए बुझ जाइएगी तो थारे
1: छोड़ दिया सा नहीं घरे
0: अरे वहाँ बोल जाए आप उगा दो कोई जरूरी काम है जब जल्दी रहे और रसोड़ो तर कर दो तैयार हूँ मैं माड़ा फेर बैठो हूँ जिसे है जो कह बेड़ू तैयारी कर दो
1: आओ।
0: और हम तारे ऊँचा आई गान प्रोग्राम टाइम होगो पूरा भाषण ले वही
1: राम राम, राम।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के शुरुआत में आपको सुनाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि और साथियों की आवाज़ में। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत राजेश रोशन का है।

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो माँ, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दार दार, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया।
2: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
3: अरे ये जहां भी कोई जीना है लल्लू,

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए साहिर का रचा तराना एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाज़ है लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

फिल्म संगीत में अब आपको सुनाते हैं सिलसिला फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत है जावेद अख्तर का, संगीत शिव हरी का है।

मजरूह का लिखा तराना राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनाते हैं अनवर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जनता हवलदार।

आइए अब आपको सुनाते हैं आईना फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत है समीर का, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का है।

नूरी फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं। गीत है जानेसार अख्तर का, संगीत खयाम का।

तेजाब फिल्म का ये गीत है नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाजों में। गीत जावेद अख्तर का, संगीत लक्ष्मी प्यारे का।

फिल्म संगीत के आखिर में आपको सुनाते हैं दाता फिल्म का गीत। यशुदास की आवाज़ है, गीत हैं कुलवंत जैन का, संगीत उषा खन्ना का।

0: येसुदास के गाए इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर यहीं खत्म होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने के हैं। कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए

0: ये विस्तृत रूप से चर्चा की भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44

0: 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है उनके नेतृत्व में हमारे

0: संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।

0: इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: मिस्टर मोदी stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, including rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
1: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization, FAO, at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. It is awarded to distinguished world leaders and individuals for exceptional and long-term contributions to global food security, sustainable agriculture, poverty reduction and improved nutrition. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway. Rajnath Singh has termed Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Interacting with the Indian diaspora of South Korea in Seoul, the defense minister said the operation was proof that India will not tolerate terrorism in any form.
3: भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं।
4: इंडियाज पॉलिसी टुडे इज नॉट रिएक्टिव बट प्रोएक्टिव। पर्सनली आई ऑल्सो बिलीव दैट नेशनल सिक्योरिटी विल नॉट बी कम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। विद दिस विजन इंडिया इज रैपिडली प्रमोटिंग इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। बिफोर 2014 आर टोटल डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली वर्थ 44,000-55,000 करोड़। टुडे इट हैज इंक्रीज्ड टू 1,54,000 करोड़ एंड विद इन द नेक्स्ट मंथ इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच नियरली
3: 1,75,000 crores. आप देखने को मिलेगा।
1: The defense minister also chaired the India-South Korea Defense Industry Business Roundtable in Seoul. Speaking on the occasion, Mr. Singh said the two countries can jointly develop and produce advanced technologies and defense systems for the future. During the event, two agreements were also signed, signaling a promising future for India-Korea defense innovation and technology partnership. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website.

0: More from our correspondent.
1: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
2: ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य सुधा। साहित्य सुधा में आज सुनते हैं राजस्थानी काव्य पाठ। कवयित्री हैं रीना तंवर। नवोदित कवयित्री रीना तंवर राजस्थानी कविता का सुपरिचित नाम है। आप साहित्य में तरनेजा मोहन राठौड़ के नाम से रचनाएं करती हैं। आइए सुनते हैं तरनेजा मोहन राठौड़ का राजस्थानी काव्य पाठ।
3: हाथा में रचे मारे पिवजी रो नाम, चांद सूरज सा साखी है, ओ मारो रूंछणो धाम। तिवारा रो खटको बाजे रे सखी, गेल प्रीत रे भाजू रे सखी। कुटीजे पिसीजे सिला माथे, रंग उगड़े हिया माथे। बडेरा केवत में केविजे रे सखी, नखा बीचली मेंदी राचनी रे सखी। कुंकू पगलिया धरिया डोढ़ी रे अभ्यंतर, नेह रंग राचे हाथा आयो लाज रो लंगर। हरक हरक रानी बेस में नाचू रे सखी, कि कहवे कि हरक हरक रानी बेस में नाचू रे सखी, राग कान्हा में गेली राधा बाजू रे सखी। गोपियां डाहे देख मारो संसार, कि गोपियां डाहे देख मारो संसार, कान्हो मारो हेत रे उणियार, कि कान्हो मारो हेत रे उणियार। थारो हाथ मारे हाथा में, कि थारो हाथ मारे हाथा में, ज्यों धरती ने मिले अंबर, जुग जुग जीवे ओ जोड़ लो, कि जुग जुग जीवे ओ जोड़ लो, प्रीत रेवे अमर, के प्रीत रेवे अमर। चंदा रे चांदने तारा छाया आंगणे, काया भीजे कामणी ओलियो थारी मन भावणी। कि चंदा रे चांदने तारा छाया आंगणे, काया भीजे कामणी ओलियो थारी मन भावणी। गेसु काली घटा मोहिनी बिखेरे छटा, मेमद सोहे सलगती सेजा हिये में शूला, अर मेमद पड़के हिंगलू झलके ललाट टीकी पड़कादार। कजरा नैन कटार गले सोहे नवलख हार, नाके नथणी रो भार। पोयण पाखड़ी गुलाब झूले काना बांटा रुआब, माला मुतियण तिखण उरोज झांझर छणके पद सरोज। की लचकती कटी बहकती मती, के लचकती कटी बहकती मती, कंदोरे रो भार और रूपाड़ो शिणगार। कि बरसे नेह बिरखा भीजे गेली राधा, कि बरसे नेह बिरखा भीजे गेली राधा, कान्हा अधरा रीत प्रीत री थारी मारी।

जीत री के कान्हा अधरा रीत प्रीत री थारी मारी जीत री। उन दिवसा री बात छे हूँ कवली कोपल जू होती ही कि कंचन काया आईने देख मुड़कती ही भवरारी दीट सू इन्ने बचाए राखती ही जद सुनिया शब्द थारे मनरा हरक हरक कर दर्शन रो चाव राखती हती कि सामी कदेई नी पड़ियो रे कान्हा कि सामी कदेई नी पड़ियो रे कान्हा पण हूँ थने ओळखती हती कि पण हूँ थने ओळखती हती कि मीरारी प्रीत पर ना इतरा रे कान्हा कि मीरारी प्रीत पर ना इतरा रे कान्हा उनरी प्रीत लौकिक रे कान्हा कि मारी प्रीत सु मत जोड़ी कि मारी प्रीत सु मत जोड़ी आ तो अंतस में रमियोड़ी अलौकिक रे कान्हा कि कान्हा केई बरसा सु थने उड़ी कु भर नैणा में पाण कि कान्हा केई बरसा सु थने उड़ी कु कि भर नैणा में पाण जद थू मिल जावे एक बार सुपना में आए कि जद थू मिल जावे एक बार सुपना में आए मारे धीरज रो छे आ जासी अनजाने में मारे मुंडे सु फगत कान कान निकलसी जद जग हसेलो अर मने गेली राधा के उसी अर जद जग हसेलो अर मने गेली राधा के उसी। पण तू चिंता न करजे पण तू चिंता न करजे कान्हा मारे हिवड़े में तू सदा इया ही रहसी कि मारे हिवड़े में तू यूं सदा ही रहसी मारी सखियां केवे कि मारी सखियां केवे कि रेली बावली राधा यूं तू मन में ही मोद करे है कि रेली बावली राधा तू यूं मन में ही मोद करे है नैणा में तू यूं गुमेज भरे है कि का कान्हो थारो है कि थू कानारी अर कान्हो थारो है कि देखे कि मौत करे कि माजे के होश में आ जा कि सबली मने कहवे कि होश में आ जा कान्हो थने बिसर गयो छोड़ थारी अणगाती प्रेम री गलिया किणी राणी रे मन बस गयो ईसा शब्दारा बाण कान्हा मारे हिये ने रुड़ावे है कि ईसा शब्दारा बाण कान्हा मारे हिये ने रुड़ावे है पण थारो मारी प्रीत ने नाजोगा कई जाने कि पण थारी मारी प्रीत ने नाजोगा कई जाने कोशिश रा पग टूट जावे जद तू मने याद करे कि कोशिश रा पग टूट जावे जद तू मने याद करे थारी अमर प्रेम री सौरम कि थारी अमर प्रेम री सौरम फूला फूला में महकावे थारे नैणा रो नेह जणा जणा में छड़के पण नेह रो छेड़ो थासू छूटे कोनी पण नेह रो छेड़ो खाना थासू छूटे कोनी थारी ओप हिवड़े सू मारे जावे कोनी नहीं कान नहीं कि नहीं कान नहीं थारो मारो ब्याव कोनी हो सके कि नहीं कान नहीं थारो मारो ब्याव कोनी हो सके आ बात मारे हिवड़े में शूल सी चुभ जावे पण जद आंकू थारी मारी प्रीत ने पण जद आंकू थारी मारी प्रीत ने निष्काम भाव सू समर्पित वे जाऊं कान्हा नहीं नहीं थारो मारो ब्याव कोनी हो सके क्योंकि एक जीवरा दो अलग अलग शरीर हां आपा थू मारो काना है और हूँ थारी गेली राधा कि थू हारो कानो है और हूँ थारी गेली राधा कि कान्हा किण विद करूं मैं श्रृंगार कि कान्हा किण विद करूं मैं श्रृंगार कांपे मारी किरी किरी कि कांपे मारी किरी किरी मन गावे आज मल्हार कि मन गावे आज मल्हार रोम रोम उन रंग में डूबियो आख्या रूप हजार कान्हा किण विद में करूं सिंगार मारा हेत रतन परखणिया दर्पण सामी वैसी ने गजरो खीज उड़ावे है कर रूसणो आपे सुही झरोके कने आई जद उड़ती कुर्जा ने आपरी शेम पूछी हवले से काना पर बोलना मेलगी कि हवले से काना पर बोलना मेलगी
कहवे के थारो कान्हो बसे परदेसा, कि थारो कान्हो तो बसे परदेसा, किण विध ओ शिणगार चढ़ायो, जद मारी अदगेली पलका में कोरा में लग भर आयो, कि कान्हा कि जद मारी अदगेली पलका में कोरा में लग भर आयो, हिवड़ेरी पीड़ आख्या में हुलराई, रेथू कसुम्बल कलियां सो रंगीलो, के रेथू कसुम्बल कलियां

सो रंगी लो पण खोड़ी लो ज्यां एक भंवरो कि पण खोड़ी लो ज्यां एक भंवरो गेली राधा रे रंग रो रोस थे नी जानो कि इन गेली राधा रो रंग रो रोस थे नी जानो अठीने मेह झड़ मझ राता अर कवळे कर कापती मनवार माथे उड़ीकती हेम हड़ाऊ ने झरती आखा अरज कान ने बेगो आईजे बाट जोहती हेतरी हेमाणी बार ने उड़ीकती थारी लाडो रानी के बार ने उड़ीकती थारी लाडो रानी रे मारा प्रीतरा धनी एकर तो पाछा भालता कि रे मारा प्रीतरा धनी एकर तो पाछा भालता हूँ रड़वड़ तो रूपाड़ो मोती कि हूँ रड़वड़ तो रूपाड़ो मोती एकर तो वचन आप रो पालता कि एकर तो वचन आप रो पालता सपना सात सिंगारू भर नैणन में आस कि सपना सात सिंगारू भर नैणन में आस हिये ने फगत उजल प्रीत रो रास कि हिये ने फगत उजल प्रीत रो रास सांझ ढलियां तारा छियां भी आया कोनी आप कि सांझ ढलियां तारा छियां भी आया कोनी आप अंतस में सुनी ने कई बरसा सुआपरी चाप कि अंतस में सुनी नहीं कई बरसा सुआपरी चाप झरमर चाले मनड़े रो झेरणो रे सखी कान मारो तो एकज गहनो रे सखी जाय ने कोई उनाने झालो देवो रे जग कहवे गेली राम राधा भलो रे कि जाय ने कोई उनाने झालो देवो रे जग कहवे गेली राधा नाव भालो रे हिये रे उंडे शब्द झबोड़ा लेवे कि हिये रे उंडे शब्द झबोड़ा लेवे फगत हिये री पीड़ या बहतो नैणा रो नीर दर्द रो छे बंद जावे कि जद आपे सू बारे निसर आवे कि जद आपे सू बारे निसर आवे नीर रो समंदर अंतस रे माए झबोड़ा लेव तो उफान रो वेग लाए कालजे में सावन री झड़ी लगाए नीर नैणा सू निरंतर बहाय सूनी हो जावे मनरी मेड़ी कि सूनी हो जावे मनरी मेड़ी याद बिसरावे जद थू मारी कि याद बिसरावे जद थू मारी बैठोड़ी रे पांख लागा रे सखी कि राम बुलावो आयो रे सखी भारी मनसू कान मिलन ने तरसू रे सखी कि भारी मनसू कान मिलन ने तरसू रे सखी जी करे मेह बणने बरसू रे सखी कि जी करे के मेह बणने बरसू रे सखी न भूख न प्यास सतावे रे सखी कि न भूख न प्यास सतावे रे सखी फगत नैणा में छिब कान हरी रे सखी फगत नैणा में छिब कान री रे सखी संदेशो मारो पुगा दीजे कि संदेशो मारो पुगा दीजे बाट जोउला कह दीजे कि बाट जोउला कह दीजे झड़ी बिन मौसम लगवाई रे कान बिरखा बन मिलन में आई रे कान सूतोड़े रे पगातिये बैसी रे कान निरख निरख दूजे जलम मिलन री आस कि निरख निरख दूजे जलम मिलन री आस अखियां खोल बैसी गेली राधा थारे पास कि अखियां खोल बैसी गेली राधा थारे पास प्रीत रीत में कलम डुबोई रे कान कि प्रीत रीत में कलम डुबोई रे कान इन तरह में थारी गेली राधा मांडी रे कान इन तरह थारी गेली राधा मांडी रे कान कि पीड़ हिये रोशूल कि पीड़ हिये रोशूल कूड़ सांच रे बिचाले अटकियोड़ो कूड़ सांच रे बिचाले अटकियोड़ो गलेरी फांस बणियोड़ो हमदर्दी रो दर्द बणियोड़ो काल जो मारो चुटी जे हिये री पीड़ पाना उतारू प्रीत में कान्हा रे हूँ गेली राधा बाजू रे सखी कि कलजुगरी गोपियां रे बिचाले कि कलजुगरी गोपियां रे बिचाले कान्हो मणे बिसर गयो रे सखी आपरी जग चावी मुस्कान सू बहलावे रे सखी भरिए नैणा नीर देखूं हूँ मंत्र मुग्ध सी कि नेहरी गलियां में फिरूं बण जोगन रे सखी नीम हकीम रो विफल रोगन रे सखी कालजे रो शूल
कियां मैं काढ़ू रे सखी, आ पीड़री कटार कियां भाणू रे सखी, बेसुध सी गैली राधा मैं बाजू रे सखी।

0: बेसुध गेली राधा बाजू रे सखी।
1: साहित्य सुधा में आप सुन रहे थे अभी तरनी जामोहन राठौर का काव्य पाठ राजस्थानी में।

0: जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगर की चैनल है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: चर्चा का विषय है।

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक

देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम

0: हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
1: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत के विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
3: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाई जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
4: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child

0: great opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
2: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
0: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
0: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट।

0: climate change. We want to bring solar energy into our lives. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training and building institutions. We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving, costs are coming down, and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मरन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं. कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही. जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई. वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
2: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी. हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी. तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा. और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है. और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है. भारत को उतना फायदा नहीं होना, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं. ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है.
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते. भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं. आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
3: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं. अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं. वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है. और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है. यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है. और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है. ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें 100 बिलियन डॉलर भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब यहां पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि मेरे विचार

0: से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
0: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सकें, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि

0: दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
1: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रोफेसर कविता चक्रवर्ती का राग बिहाग में सितार वादन, जोड़ झाला विलंबित मध्य द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं राजन द्वारका।

अभी आप सुन रहे थे राग बिहाग में प्रोफेसर कविता चक्रवर्ती द्वारा सितार वादन, तबला संगत कर रहे थे राजन द्वारका। आइए अब सुने अलाउद्दीन खान साहब द्वारा सरोद पर राग जय जय वंती।

0: आप सुन रहे थे राग जय जयवंती अलाउद्दीन खान साहब द्वारा। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का बुलेटिन अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री

राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्ष

0: vote to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.
1: जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। राज्य के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 5:51 पर आपसे पहली सभा में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।